0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই সৰফিৰোজি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कील स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रूपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा

धूप में साथी बने।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী এতিয়া 7:55 আঞ্চলিক বাতৰি, 8:00 সমাচাৰ প্ৰভাত, 8:15 মৰ্ণিং নিউজ আৰু 8:30 নৰ্থ ইষ্ট নিউজ শুনিবলৈ পাব।
1: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়, পুৱাৰ বাতৰি কৈছো সমুজ্জ্বল ভৰদ্বাজে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ কঠোৰ পদক্ষেপৰ ফলত ৰাজ্যত গড় চিকাৰৰ ঘটনা ক্ৰমাৎ শূন্যলৈ হ্ৰাস পাইছে। বন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি 2021 পৰা 2026 চোৰাং চিকাৰীৰ হাতত মাত্ৰ 7 গড়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। ইয়াৰে ভিতৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 2021 দুটা, 2023 এটা আৰু 2024 দুটা গড় চোৰাং চিকাৰীয়ে হত্যা কৰাৰ বিপৰীতে 2023 মানস আৰু ওৰাঙত এটাকৈ গড় চোৰাং চিকাৰীয়ে হত্যা কৰে। ইপিনে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে নতুন নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। বিগত 3 বছৰত উদ্যানখনত গড় আৰু বাঘ চিকাৰৰ এটাও ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কালি সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বহু বছৰ ধৰি অসমৰ বনাঞ্চলত চোৰাং চিকাৰীয়ে ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল যদিও বন বিভাগৰ বিষয়াকৰ্মীৰ অক্লান্ত নিষ্ঠা, সাহস আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ফলস্বৰূপে মানসত সম্প্ৰতি চোৰাং চিকাৰ প্ৰতিৰোধত অভূতপূৰ্ব সফলতা লাভ কৰিব পৰা গৈছে। তেওঁ কয় যে বৰ্তমানে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰতিমাহে প্ৰায় 38,000 কিলোমিটাৰ এলেকাত নিয়মীয়াকৈ টহল দিয়া হয়। কঠোৰ প্ৰচেষ্টা, আধুনিক পহৰাদাৰী ব্যৱস্থা আৰু সজাগ জনসাধাৰণৰ সহযোগিতাই মানসক বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ অনন্য সফলতাৰ কাহিনীত পৰিণত কৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। অসম বিধানসভাৰ কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতিৰ বৈঠকত কালি 6-31 জুলাইলৈ চলিবলগীয়া 26 বাজেট অধিৱেশনৰ বিতং কাৰ্যসূচীত অনুমোদন জনোৱা হয়। সেই অনুসৰি বিধানসভাৰ আসন্ন অধিৱেশনৰ সময়ছোৱাত মুঠ 21 বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। 10 জুলাইত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেট উত্থাপন কৰিব। অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত কালিৰ বৈঠকত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, বিধায়ক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ, শ্বেৰমান আলী আহমেদ, মজিবুৰ ৰহমান আৰু ডঃ জয়প্ৰকাশ দাস উপস্থিত থাকে। সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে বৈঠকত ভাগ লয়। ধেমাজি জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কালি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এখন বান প্ৰস্তুতিমূলক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলাৰ বাবে বিভাগীয় বিষয়াসকলক সাজু থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। ধেমাজিৰ জিলা আয়ুক্ত ৰাহুল জাবিৰ সুৰেশৰ দ্বাৰা আয়োজিত এই বৈঠকত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বানৰ সময়ত বন্যাৰ্তসকলৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰ, চিকিৎসা সেৱা, ঔষধ, খাদ্য সামগ্ৰী আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ উপলব্ধতা সংক্ৰান্তীয় প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয় আৰু সকলোধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে। তেওঁ লগতে জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়াৰ সৈতে নৈ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ মথাউৰিৰ স্থিতিৰ বিষয়েও বিতংভাৱে আলোচনা কৰে আৰু যাৱতীয় দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। সাংবাদিকৰ আগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে কয়।
2: ধেমাজিত প্ৰত্যেক বছৰে বানপানী হয় আৰু যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হয়। বাৰিষা যিকোনো মুহূৰ্ততে বানপানী হ'ব পাৰে ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে ধেমাজি। তাৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলাই থৈছে আমি গম ল'লোঁ আৰু প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনাখিনি আমি দিলোঁ।
1: অসম সাহিত্য সভা আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যুটীয়া উদ্যোগত ধেমাজি জিলাৰ গোগামুখত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অহা 20 জুনত কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভা দিৱস অনুষ্ঠিত হ'ব। এই অনুষ্ঠানতে বিশিষ্ট লোকশিল্পী তৰাৱতী মিলি বৰিলৈ 2026 কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডঃ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী, অৰণ্য মানৱ পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে বিভূষিত যাদৱ পায়েং, মন্ত্ৰী ডঃ অনুজ পেগু আৰু শংকৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰ ডঃ ভৱেন্দ্ৰনাথ ডেকা প্ৰমুখ্যে ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশ ল'ব বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ EKYC আৰু আধাৰ সংযোগ প্ৰক্ৰিয়া ক্ষীপ্ৰতৰ কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত সমগ্ৰ জিলাখনতে ব্যাপক সজাগতা অভিযান চলোৱা হৈছে। জিলাখনৰ কোনো যোগ্য হিতাধিকাৰী যাতে আধাৰ সংযোগ নোহোৱাৰ বাবে চৰকাৰী ৰেহাই আৰু LPG চিলিণ্ডাৰৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সজাগতা অভিযান চলোৱা হৈছে। জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে জিলাখনৰ প্ৰতিখন গাঁও পঞ্চায়তৰ সমবায় সমিতি, সুলভ মূল্যৰ দোকান, গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়, ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়, অসামৰিক চিকিৎসালয়, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গড়মূৰ শাখা আৰু পেট্ৰল পাম্পসমূহত বেনাৰ আৰু পষ্টাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকসকলক যথাশীঘ্ৰে নিজৰ চিলিণ্ডাৰ বিতৰকৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ যাৱতীয় প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে কালি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হাস্পতালত চলি থকা নিৰ্মাণ কাৰ্যসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে আৰু প্ৰকল্পটোৰ অগ্ৰগতি খতিয়ান লয়। পৰিদৰ্শনকালত বিধায়কগৰাকীৰ সৈতে জিলা আয়ুক্ত বিক্ৰম কুইৰী, ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ ডঃ সৈকত পাত্ৰ, ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আয়ুক্ত নভাস কুমাৰ দাস, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ বিষয়া উপস্থিত থাকে। গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পটো যথাগিৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল। পৰৱৰ্তী বাতৰি পুৱা 9 বজাত শুনিবলৈ পাব।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: रंगुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
8: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
9: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
8: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
10: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
8: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
11: एनटीए इज कमिटेड,
12: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
11: एंड वी विल इंश्योर दैट द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
6: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
13: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
6: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of 3-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life. Highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia, Prime Minister said, it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. The French city of Avion remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. A report.
15: This meeting also holds significance as India has emerged as a major global power, with the international community increasingly looking towards New Delhi for solutions to complex global challenges. India's growing role in shaping discussions on global issues reflects its expanding diplomatic outreach and active engagement with world leaders across forums. During an outreach session at the summit yesterday, Prime Minister Narendra Modi underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. He also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life and Ek Ped Maa Ke Naam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Ankit Kumar, Akashwani News, Avion, France.
14: Besides his meeting with the US President, Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold a trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President von der Leyen, and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Earlier yesterday, the Prime Minister held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, and the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, on the sidelines of the summit. The G7 nations have announced a series of initiatives to strengthen global health and development cooperation with several partner countries, including India. The G7 leaders called for a coordinated international response to the re-emerging Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda. India, Egypt, Kenya and South Korea joined the appeal for enhanced measures, including contact tracing, border surveillance and community engagement. The leaders also pledged support for the development of vaccines, diagnostics and treatments for the rare Ebola strain. Home Minister Amit Shah chaired a crucial meeting in New Delhi yesterday on the long-pending Keshau Multipurpose Dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. In a statement, Home Ministry said that Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a Memorandum of Understanding for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Keshau project will be placed before the Union Cabinet for approval. Under the agreed funding pattern, the central government will provide 90% assistance for the water component of the project, while the remaining 10% will be shared by the six states. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the Morning News. National Testing Agency, NTA, has urged parents and candidates to beware of scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with claims of sharing the re-exam paper.
16: It clarified that there is no leaked paper for the re-examination. It said that fake proof videos showing chats from before the exams are also being circulated. NTA also shared the video of its Director General Abhishek Singh explaining the reason behind blocking the access to the app in the country. Talking to media, Mr. Singh said that NTA is committed to ensuring that no malpractice happens and assured that every question paper has been made in a complete secure manner. He said the agency has added layers of security to ensure that nobody who is involved in setting up the question papers, translating, printing, moving or storing them till the date of examination is compromised in any manner. With Rishu Jaiswal, Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
14: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashvani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the steps taken by the government towards preservation and promotion of the country's heritage.
8: Over the past 12 years, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has undertaken several landmark initiatives to preserve, promote and celebrate its civilizational legacy, instilling a sense of pride among millions of citizens. One of the most significant moments came in January 2024 when Prime Minister Narendra Modi performed the Pran Pratishtha of Ram Lala at the Grand Shri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya, marking the fulfillment of a centuries-old aspiration. Built in the traditional Nagra style, the temple stands as a symbol of faith, devotion and India's architectural excellence. Talking to Akashwani News, Pankaj Jaria, a devotee who recently visited the temple, shared his experience.
9: Mera naam Pankaj Jaria hai.
17: A few days ago, I went to Ayodhya where we had the darshan of Prabhu Shri Ram. The arrangements are very good. The government has made excellent arrangements to manage the crowd. Everyone stands in line to have the darshan. There are locker facilities for people to keep their belongings. There is also a facility for drinking water. Very good arrangements have been made and there are also beautiful table locks and displays which look very divine.
8: In Ujjain in Madhya Pradesh, the first phase of the Mahakal Lok project was dedicated to the nation in October 2022. The total cost of the project is around 850 crore rupees. The Grand Corridor showcases magnificent sculptures, murals and architectural elements depicting the life and legends of Lord Shiva. Equipped with modern technology and AI-enabled monitoring systems, Mahakal Lok beautifully blends heritage with innovation. In Varanasi, the Kashi Vishwanath Corridor, inaugurated in December

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12 বজাত হিন্দীত বাতৰি, 12:05 ইংৰাজীত বাতৰি আৰু 12:10ৰ পৰা শুনিবলৈ পাব সৈন্য বাহিনীৰ বাবে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে লভলীন নিগম। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजावेलु और VP शिव कोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNH राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में 2:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 297.9 मीटर, 1075 किलोहर्ट्ज ऑडियो एम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण। सैनिक भाइयों, मैं त्रिनेनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के प्रसारण में।

हम आपसे कुछ ही देर में शुरू करेंगे मधुर गीतों का मनभावन सफर, लेकिन इससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही क्षणों में हम लेकर आएंगे पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत, 12:30 पर आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम फिल्मी नगमे, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

समाचार के बाद 1:10 पर हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम तरंग। 1:40 पर कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। दिन के 2:00 मिडडे न्यूज और 2:15 से दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

समाचार के बाद दिन के 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम प्रीत लड़ी। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का अंत होगा दिन के 3:00। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

प्रस्तुत है आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना है सनम रे फिल्म से अरमान मलिक और पलक मुच्छल के आवाजों में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 135 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 124 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का गीत। आइए सुनते हैं ये गीत जय हो फिल्म से, बोल है गुलजार के, संगीत है ए आर रहमान के और आवाज है युवराज की।

हमारा अगला कार्यक्रम है फिल्मी नगमे, लेकिन कार्यक्रम के शुरू होने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। रोजाना की तरह कल के प्रसारण का आगाज होगा 12:10 पर। पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत का वक्त होगा 12:12। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर राग रंग। 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल केंद्र से। समाचार के बाद 1:10 पर हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम स्वर छाया। 1:40 पर कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। दिन के 2 बजे मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

समाचार के बाद 2:30 पर हम प्रस्तुत करेंगे कल के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीत रंगीली। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

0: ये आकाशवाणी घाटी का प्राग्ज्योतिष पुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 135 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 126 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत है किनारा फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।
1: किशोरदा, आपके साथ गुजारे लम्हे अभी तक न जहन से उतरे हैं न कान से। आपके चाहने वाले आज भी आपको ऐसे ही याद करते हैं जैसे कल ही तो मिले थे, कल ही तो आपको गाते सुना था, बोलते सुना था, हंसी मजाक करते देखा था। हर लम्हा अभी तक वैसे ही जाग रहा है, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, हम आपको बता दें कि अब से लेकर 1:40 तक हमारा ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 529.1 मीटर पर।

अब प्रस्तुत है कार्यक्रम तरंग। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे ऋतिक रोशन द्वारा अभिनीत फिल्मों से गीत। 10 जनवरी 1970 को मुंबई में जब राकेश रोशन और पिंकी रोशन के घर बेटे का जन्म हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो बच्चा हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाएगा।

इन महाकलाकार का नाम रखा गया ऋतिक, राकेश, नागराथ, रोशन। डुग्गू से गौरव बॉलीवुड तक का सफर एक शर्मीले बच्चे से लेकर भारत के सबसे फिट और टैलेंटेड सुपरस्टार बनने की कहानी है इनकी। ऋतिक सिर्फ एक्टर नहीं है, वह जुनून, मेहनत और कमबैक का दूसरा नाम है।

अभी आपने सुना ये गीत क्रिश फिल्म से उदित नारायण और श्रेय घोषाल की आवाजों में। आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गाने की तरफ। कार्यक्रम का अगला गाना है काबिल फिल्म से जुबिन नौटियाल और पलक मुच्छल की आवाजों में।

ऋतिक के जीवन का मूल मंत्र है, पेन इज टेम्पररी, ग्लोरी इज फॉरएवर। जीवन में अनेक संघर्षों के बावजूद हर बार वह गिरकर उठे और पिछले बार से ज्यादा मजबूत दिखाई दिए।

ऋतिक को उनके कार्यों के हेतु भिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स आदि। सैनिक भाइयों, आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गाने की तरफ। कार्यक्रम का अगला गाना है फिजा फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 135 किलोहर्ट्ज़ और डीएम फ्रीक्वेंसी 126 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे मधुर तेलुगु गीत। कार्यक्रम का पहला गाना है सारदा बोल्लुडु फिल्म से एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा के आवाजों में।

0: recent dialogue. So comprehensive discussions are expected on the issue. Besides, this progress on the trade deal between the two countries is also expected to be on the agenda. Additionally, India may talk on the issues of energy security as the West Asia crisis and other geopolitical tensions increase the risk of disruption in the energy sector. Therefore, this issue could feature prominently in the talks. Apart from these critical topics, Mr. Modi and Mr. Trump are expected to discuss the entire gamut of bilateral trade between India and United US. Sagun.
1: All right. Thank you for the updates, Ankit. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Paris this evening as part of his visit to France. Members of the Indian diaspora are eagerly awaiting his arrival and preparations are underway to welcome him. He will participate in Europe's leading technology and innovation events, Viva Tech Summit, tomorrow. More from our correspondent.
2: Tomorrow morning, Prime Minister Modi is scheduled to hold meetings with leading chief executive officers, with discussions expected to continue till afternoon. Later, he will participate in the Viva Tech Summit, one of Europe's leading technology and innovation events, where he is expected to deliver an address. In the evening, the Prime Minister will attend a community event and interact with the members of the Indian diaspora. The program will also feature cultural performances highlighting India's rich heritage and further strengthening the people-to-people ties between India and France. Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
1: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal called on Prince Albert II of Monaco. In a social media post, Mr. Goyal said that during their meeting, they discussed expanding the India-Monaco partnership in sectors such as sustainability, the blue economy, innovation and emerging technologies. Defence Minister Rajnath Singh has said that from a policy of zero tolerance against terrorism to decisive actions such as surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor, India has sent a clear message that its sovereignty is non-negotiable. In a social media post, Mr. Singh noted that India has witnessed a historic transformation in its national security architecture under the astute leadership of Prime Minister Narendra Modi. He added that the country's resolve for Atmanirbharta in defence has strengthened indigenous capabilities, modernised armed forces and enhanced preparedness across land, sea, air, cyber and space domains. The Defence Minister underlined that the journey of the last 12 years reflects a stronger, safer, self-reliant and more confident India, ready to safeguard its national interests and emerge as a leading global power. Defence Minister Rajnath Singh has highlighted that India's annual defence production has surged to an all-time high of 1.78 lakh crore rupees in the financial year 2025-26. In a social media post, Mr. Singh said that this milestone represents an impressive 15.6% growth over the previous fiscal year's output of 1.54 lakh crore rupees and a staggering 110% increase since financial year 2020-21 when the figure stood at over 84,000 crore rupees. He added that indigenous defence production has increased nearly fourfold from 4,746 crore rupees in financial year 2013-14. Prime Minister Modi has highlighted that India's defence capabilities have witnessed a significant transformation over the last decade, guided by the vision of self-reliance and powered by innovation, technology and indigenous manufacturing. Sharing a thread of MyGov on his social media account, Mr. Modi explained how the country has strengthened its defence capabilities across air, land and sea, advanced indigenous technologies and built a stronger foundation for self-reliance and national security. Home Minister Amit Shah has said that over the past 12 years, under the government led by Prime Minister Narendra Modi, India has been rebuilt as a bastion of security that shields the citizens and unleashes destruction upon its enemies. In a social media post, Mr. Shah underlined that whether it is responding to enemies across border with the firepower of surgical strike, airstrike and Operation Sindoor, abrogating Article 370, eradicating Naxalism or fortifying internal security with over 12 accords in the Northeast. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav today said that India has already brought 21.76 million hectares of land under restoration efforts against its target of restoring 26 million hectares by 2030. He said this while addressing the event to commemorate World Day to Combat Desertification and Drought 2026 in New Delhi. Speaking on the theme of this year's observance, Rangelands Recognize, Respect, Restore, Mr. Yadav cited India's desertification and land degradation atlas and said that around 29% of the country's geographical area is affected by land degradation and desertification.
3: We fully reaffirm our ministry's commitment declared by the Honorable Prime Minister during the COP 2014 Delhi Declaration, where it was pledged that we would work toward the restoration of 26 million hectares of land by the year 2030. Under the Government of India's Green India Mission, we have already carried out work on approximately 1.7 lakh hectares of land. Furthermore, with the support of CAMPA, we have also successfully undertaken forestation effort across 3.2 lakh hectare of land over the past 5 years.
4: हम लोगों ने forestation करने का काम किया है.
1: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav today said India has emerged as a major electronics manufacturing hub and is now the world's sixth largest exporter of electronics. He was speaking after inaugurating the new manufacturing facility of US-based company Jabil at Ranjangaon MIDC in Pune. Mr. Vaishnav said that under the leadership of PM Modi, India has transformed into a global electronics manufacturing destination and is exporting products to markets across the world. Three new ministers were inducted into the Puducherry cabinet today, completing the long-awaited expansion of the Council of Ministers. All India NR Congress MLAs P. Rajvelu and VP Shivkulindu and BJP MLA GNS Rajashekaran was sworn in as ministers at a ceremony held at Lok Nivas. Lieutenant Governor K. Kailash Nathan administered the oath of office and secrecy. National Testing Agency NTA has urged parents and candidates to beware of scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with claims of sharing the re-exam paper. It clarified that there is no leaked paper for the re-exam. It said that fake proof videos showing chats from before the exam are also being circulated. NTA also shared a video of its Director General Abhishek Singh explaining the reason behind blocking the access to the app in the country.
5: See, NTA is committed 100% to ensure that no malpractice will happen. Every question paper has been made in a complete secure manner. We have added layers of security to what is normally done. We have taken every single precaution to ensure that nobody who is involved in setting up the question papers or translating them or printing them or moving them or storing them till the date of the examination is compromised in any manner.
1: In Manipur, security forces intensified counterinsurgency and law enforcement operations across the state, arresting three militants and destroying 26 illegal bunkers in separate operations, said the officials today. The militants were arrested from different locations in Imphal West District. Police said they were allegedly involved in multiple violent and criminal activities. US President Donald Trump has criticized Israel's military campaign against Hezbollah in Lebanon, saying the conflict has continued for too long and has led to excessive civilian casualties. Speaking on the sidelines of the G7 summit in France, Mr. Trump said Israel was fighting Hezbollah too long and that too many people are being killed. India has delivered another 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance for the well-being of the people of Afghanistan. In cricket, India was 70 for 1 in 8.1 overs against Afghanistan on the second one-day international of the three-match series in Lucknow. Earlier, Afghanistan won the toss and elected to field first. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 225 points to 77,033, while the Nifty advanced 66 points to 24,056 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defence Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defence production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26, surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur, 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
6: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
7: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है, ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
6: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मद से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओ के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
6: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
8: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
6: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
4: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता माननीय प्रधानमंत्री

0: मंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
1: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
2: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी न हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
1: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
3: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ ऑडियो फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

आइए हम आगे बढ़ते हैं आज के प्रसारण का अंतिम एवं युगल गीतों का कार्यक्रम प्रीतलड़ी की तरफ। कार्यक्रम का पहला गीत है खट्टा मीठा फिल्म से केके और सुनिधि चौहान की आवाजों में।

इसी के साथ होता है आज के प्रसारण के अंतिम कार्यक्रम प्रीत लड़ी की समाप्ति। कल फिर इसी समय होगी मुलाकात। तब तक के लिए मैं त्रिनेनी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: रेडियो डॉक्टर, नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम जिसमें हम स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषयों पर बात करते हैं, समस्याओं पर बात करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे स्पॉन्डिलाइसिस भी कहा जाता है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो डॉक्टर बीएस डबास हैं, जो कंसल्टेंट हैं आयुर्वेद सीजीएचएस न्यू दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में।
2: धन्यवाद मैडम।
1: और ये प्रोग्राम आप लाइव सुन रहे हैं 102.6 एफएम रेनबो पर। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से प्रसार भारती ऐप और न्यूज ऑन एआईआर पर भी आप हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आज अगले एक घंटे तक लगभग हम इस विषय पर बात करेंगे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। हम एक सवाल से शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब। जब हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, तो सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं।
2: मैडम, इसमें ये है कि जो नेक हमारी स्टिफ हो जाती है, उसकी मूवमेंट बंद हो जाती है और बड़ा सीवियर पेन होता है। धीरे धीरे वो पेन जो है हाथों की तरफ भी जाता है, कंधों की तरफ भी जाता है। तो ये तकलीफ जो है रॉन्ग पोस्चर जो हमारा है, मतलब गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से यूज करना, जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, गर्दन मोबाइल में गर्दन झुका लेते हैं और लगे रहते हैं उसमें लगातार घंटों घंटों। ऐसे ही आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो भी गर्दन नीचे करके काम करते रहते हैं, या इवन के हमारी महिलाएं जो सड़क पर चलती हुई है, हमारा ज्यादा गर्दन नीचे करके चलती है। तो ये सब कारण ऐसे बनते हैं कि गलत पोस्चर, रॉन्ग पोस्चर जो है हमारा इसको पैदा करता है 99% केसेज में। और ये ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता। हम तो आयुर्वेदिक एक व्यायाम कराते हैं, साथ में कुछ दवाई देते हैं, हम पेशेंट को तुरंत 5 मिनट में हम पेशेंट को रिलीफ करा देते हैं।
1: क्या बात है।
2: हम ऑनलाइन भी करा सकते हैं यहाँ पे, अगर पेशेंट इंटरेस्टेड होंगे तो हम बताएं क्या इस तरह से खड़े हुए, ये करिए ये करिए, तो पेशेंट विल गेट रिलीफ विद इन 5 मिनट्स।
1: तो कार्यक्रम की शुरुआत में आपने चीजें बहुत आसान कर दी हैं। अक्सर हम कहते हैं कि जब आपका शोल्डर या नेक स्टिफ हो गया है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से। डॉक्टर साहब, ये हम थोड़ा समझें आपसे कि किसी भी एज में हो सकता है, किसी को भी ये समस्या हो सकती है।
2: हाँ, किसी भी एज में हो सकता है, पर जनरली रॉन्ग पोस्चर से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बाकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हड्डियों में कुछ चेंजिंग आ जाता है, उसे भी पेन वेन होता है। पर जो लोग एक्टिव रहते हैं यानी घूमते फिरते एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, वो फिट रहते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो सभी को होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा आलस्य जो है बीमारी पैदा करता है, लेजीनेस, गलत पोजीशन में लेटना, ऊंचे ऊंचे तकिया लगाना सिर के नीचे, तो सारी चीजें उनको इन्वॉल्व होती है, सब इसको बढ़ाते हैं बीमारी को।
1: जी, तो मतलब ये समस्या का निदान हमारे पास है, देखना यह कि कैसे उसका निदान हम करते हैं। और सब अभी हमारे पास जो है मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, लेकिन उनको भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों, आप भी अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, स्टूडियो से मैं तपस्या तो हमारे डॉक्टर साहब से सवाल कर ही रही हूं, आपके भी सवाल उनको तैयार रखिएगा। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में एक अच्छा सा सॉन्ग पहले आपको सुनवाते हैं।

0: रेडियो डॉक्टर में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में और हमारे साथ हैं डॉक्टर बीएस डबास जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, आपका स्वागत है रेडियो डॉक्टर में, सवाल पूछिएगा।
1: जी मैं मोहम्मद जावेद मेरठ से बात कर रहा हूँ। मैडम मैं ये कह रहा हूँ, जब हम सोके उठते हैं तो हमारी गर्दन में बड़ा दर्द रहता है।
2: सोके उठते हैं अगर दर्द रहता है तो इसका मतलब आपका जो पोजीशन है सोने की वो ठीक नहीं है। हो सकता है आप एक एक साइड में गर्दन करके सोते हो, बीच में करौंट ना लेते हो सकता है आप ऊंची तकिया लगा रहे हो, है ना, उससे भी हो सकता है। हो सकता है शाम के टाइम आपने कोई ज्यादा ठंडी चीजें का सेवन किया हो, उससे भी अकड़न हो सकती है। तो ये बहुत सारी कारण हो सकते हैं इसमें, वो कौन सा कारण है तो आप बताएं क्या करते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तब भी आपको पेन हो सकता है, उसमें वात का प्रकोप होता है, आपकी जो उम्र है वो भी एक फैक्टर है। अगर एज ज्यादा होती है तो वायु का प्रकोप होता है तो पेन हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब ये हमारे पास एक मैसेज भी आया हुआ है, ये नेहा है मुंबई से, लिखती है कि मेरी एज 34 इयर्स है और मैं डेस्क का जॉब करती हूँ पिछले 10 सालों से। मेरे नेक में पेन है, शोल्डर्स में पेन है, लोअर बैक में पेन रहता है और शोल्डर्स जो है वो स्टिफ रहते हैं।
2: हाँ तो ये हो सकता है ये सर्वाइकल ही हो। आप अपना एक्सरे सीटी स्कैन एमआरआई अगर कराएं तो उसे कन्फर्म करें कि आप सर्वाइकल ही है। अगर आपको सर्वाइकल है और आप मेरी बात अभी सुन रहे हैं अच्छी तरह तो मैं आपको एक एक्सरसाइज बता सकता हूं। आपको 5 बार आप करोगे अभी 2-2 मिनट का गैप देकर तो आपको अभी रिलीफ मिलेगा। आप खुद ही बोलेंगे हाँ मुझे रिलीफ हो गया। देखिए अब सुनिए तरीका, आप सीधी खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद में दोनों हाथ सामने करिए अपने चेस्ट के सामने, हथेली नीचे रहनी चाहिए। उसके बाद में दोनों हाथ बॉडी के साथ साइड में करिए, जैसे पीटी करते हैं उसमें भी हथेली नीचे होनी चाहिए। अब दोनों हाथ जो है आपके पीठ के पीछे जाएंगे, बटक्स के ऊपर दोनों हथेली मिलाइए और उंगलियों से लॉक करिए आपस में। अब सीधी खड़ी रहिए और दोनों हाथों को नीचे खींचिए लॉक किए हुए, पूरी ताकत हाथों में डाल दीजिए। अब जब हाथ आपके खींच जाएं तब जब तक मैं ना कहूं हाथ ढीले नहीं करने, आप गर्दन को पीछे की तरफ लीजिए, आप जितनी जा सकती है उतनी। आंखें खोल के रखना और 30 तक काउंटिंग करनी है आपको। 30 तक काउंटिंग मतलब आधे मिनट। जब आपको ये काउंटिंग 30 तक करेंगे उसके बाद में पहले गर्दन सीधी करनी है आपको, फिर हाथों को बिल्कुल धीरे धीरे ढीला करना है, साइड में वापस लाना साइड में, यहाँ 7 तक काउंटिंग करनी है, फिर सामने लाना है 7 तक काउंटिंग यहाँ करनी है और फिर हाथ नीचे करने हैं। उसके बाद बॉडी को रिलैक्स करना है, फिर उसके बाद आप बैठ जाइए 2 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद दोबारा करिए। ऐसा आप 5 बार करो, अभी हम बैठे हैं रेडियो पे और आप अपने मुंह से बोलो कि हाँ मुझे रिलीफ हो गया। ये फिर आप लगातार इसको करते रहिए, आप ठीक रहेंगे। पोस्चर अप, क्योंकि आपका काम ऐसा है कि इसमें चांसेस होते हैं, इसलिए सुबह शाम इसको रिपीट करते रहो, देन यू विल बी ऑल राइट। नो नीड टू गो एनी डॉक्टर, नो नीड टू गो एनी हॉस्पिटल। और ये आपको बताऊं, जो ये लोग बाकी लोग जो कराते हैं वो कभी राइट को गर्दन मुड़वाते हैं, कभी लेफ्ट को, इधर प्रेशर डालो इधर पर, ये तो सभी

0: अलग चीज है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहता, पर मैं क्योंकि जो असली रीजन है हमारा सर्वाइकल का, वो गर्दन आगे झुका के काम करने का है, हम उसको रिवर्ट कर रहे हैं, यानी जो आपने गलती की है उसको सुधार रहे हैं, उससे आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, हमारी गारंटी है। 99.9% पेशेंट को हम ठीक कर देते हैं, ऑनलाइन भी फोन पे ठीक कर देते हैं, आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।
1: बहुत बढ़िया, ये तो सर बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इसमें कोई दवाई की जरूरत नहीं है और कोई साइड इफेक्ट का इशू नहीं है, आप सीधा एक्सरसाइज करके खुद अपने पोस्चर ठीक करके जो है सर्वाइकल को दूर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कॉलर हमारे साथ है, उनको लेते हैं अभी लाइन पर। हेलो।
2: हेलो
1: जी, आपका स्वागत है रेडियो डॉक्टर में, सवाल पूछिएगा।
2: नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार,
2: राजकुमार बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी सवाल पूछिएगा, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको।
2: नमस्ते डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब मेरा 56 साल की उम्र है
0: जी,
2: और ये 19 से ज्यादा महसूस हो रहा है मेरे को, मतलब
0: क्या महसूस हो रहा है,
2: मतलब ये मेरा जो है ना, मेरे हाथ पैर लेफ्ट साइड हाथ और पैर ना थोड़ा भारी था और ये उठता कम था, पहले इतना महसूस नहीं होता था, अब ज्यादा हो रहा है, और मेरे को 3-4 महीने पहले ना बुखार हो गया था, तो उससे ना मेरे को और ज्यादा भारीपन हो गया है, मतलब लेफ्ट साइड हाथ पैर पे दिक्कत आई, मैं 4 महीने से 3 महीने से दिक्कत
0: नहीं। देखो, अगर हाथ पैर नहीं उठ रहे थे आपको सर्वाइकल के अलावा, ये फ्रोजन शोल्डर भी हो सकता है, कंधे जिसे बोलते हैं कंधे जाम है, उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज करने होते हैं। देखिए, जितनी भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है ये सब एक्सरसाइज करने से ठीक हो सकते हैं, दवाई तो टेम्परेरी काम करती है।
2: मैंने 3 MRI भी कराई है, मैंने जी भी बनाया।
0: क्या निकला उसमें MRI बताइए आप।
2: वो बता रहे हैं जी सर्वाइकल के गर्दन की हड्डी में मर्ज करी है।
0: अगर सर्वाइकल का है तो मैंने अभी एक्सरसाइज बताई है, आपने सुनी भी होगी, आप उसको करिए, आपको अभी करिए, अभी हम रेडियो पे बैठे हुए हैं, आपको 5 बार करते ही आराम आ जाएगा।
2: फोन मिलाने में लगा
0: था, अगर पेन है तो देखिए सुनिए, ये तो एक्सरसाइज होगी, दूसरा अगर आपको पेन है, सुनिए,
2: दर्द कहीं भी नहीं है,
0: दर्द नहीं है बिल्कुल, खाली स्टिफनेस है, अकड़न है ना,
1: भारीपन के,
0: तो आप ये भारीपन उसमें आराम आ जाएगा ना, आप करिए इसको बस। देखिए, कोई भी ठंडी चीज आपको नहीं खानी, चावल दही लस्सी मूली नींबू फ्रिज का पानी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स, जो ठंडी चीजें हैं उनसे सारे से ना अकड़न बढ़ेगी, ठीक है, तो इसलिए ठंडी और वायुवर्धक चीजें आप अवॉइड करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, और ऑयल जो है हमारे जो है मानान तेल, हमारा अक्षीरबला तेल है, पंचकुण तेल है, आप उसको लगाइए और कोशिश करिए एक्सरसाइज करने की, आपकी हल्कापन भी हो जाएगा, खाने का परहेज विशेष तौर से रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्टिफनेस उसी जाती है आपकी ठंडी चीजों से, ठीक है।
1: डॉक्टर साहब यहाँ एक सवाल मन में आ रहा है कि आपने अभी जिक्र किया बार बार कि ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, पहले आपने कहा कि शाम के वक्त नहीं खानी चाहिए, तो अभी दिन भर में कभी भी खाने से असर हो सकता है।
0: बिल्कुल, ठंडी चीजें तो देखिए, जो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री है, अगर हम ज्यादा ठंडी चीजें खाते हैं तो बॉडी के साथ मैच नहीं करता ना, तो क्या करता है वो ठंडा भोजन हमारे डाइजेशन को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है, यानी जो हमारी अग्नि है शरीर की वो कम हो जाती है, अग्नि जो है हर चीज को जला देती है, पावरफुल अग्नि, तो जब अग्नि कम हो जाएगी तो मेद की वृद्धि होगी है ना, और ये वात और कफ की वृद्धि हो जाएगी, तो उससे जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए ठंडा तो भोजन या आइसक्रीम वगैरह तो हमारे हेल्थ के लिए शूट नहीं करती, पर क्योंकि अच्छी लगती है इसलिए लोग खा रहे हैं, पर कम से कम ओल्ड एज में थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए।
1: जी, यहाँ सवाल आपसे और लेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन अभी यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें से एक मैसेज हम ले लेते हैं। उमेश कुमार हैं खयाला से, आप लिखते हैं कि नमस्ते डॉक्टर साहब जी और मैडम को, मुझे बार बार चक्कर आते हैं, तो चक्कर आना क्या सर्वाइकल का लक्षण है।
0: हाँ, सर्वाइकल में चक्कर भी आ सकते हैं, सर्वाइकल में चक्कर आ सकते हैं, पर चक्कर तो और भी कई कारण से आ सकते हैं, मान लो आपका हीमोग्लोबिन कब तक चक्कर आ सकते हैं, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो भी आपको चक्कर आ सकते हैं, तो चक्कर आने की बहुत वजह हो सकती है, तो ये एकदम ये कह देना सर्वाइकल का ही है, सर्वाइकल की तो मैंने एक्सरसाइज बताई है, इसको करिए आप, अगर सर्वाइकल से होगा तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, ये मैंने उनको बताया है, आप करके देखिए इसे, बाकी अगर आप इन्वेस्टिगेशन कराता है तो आपका एक्सरे है, MRI है, CT स्कैन वगैरह करा लें, उसे कन्फर्म हो जाए सर्वाइकल है नहीं आपको, ठीक है ना, तो ये आपको करना पड़ेगा, और बाकी कोई पेन वेन है आपको तो पेन के लिए कोई आयुर्वेदिक दवाइयां आती है, हमारे पुनर्वादी गूगल आता है, योगराज गूगल आता है, त्रोदशांग गूगल आता है, बहुत सारी दवाइयां आयुर्वेद में, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो
1: जी। कुछ ऐसी दवाइयां जो कॉमनली कोई भी यूज कर सकता है उसके बारे में अगर आप बताना चाहें।
0: अब डिपेंड करता है मैडम, अब ये तो नहीं कि हर चीज हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है, वो देखिए उसमें एज भी मैटर करता है, वात पित्त कफ कौन सा उसका जो दोष ज्यादा है उसके वो भी मैटर करता है, एज भी करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसका, फिर वेट भी करता है, अगर बॉडी हैवी है तो डोज ज्यादा देनी पड़ेगी, अगर वीक है तो उसके हिसाब से डोज कम होगी, तो सारी कई सारी चीजें होती है जो पेशेंट के सामने बारे में पता चलता है
1: जी। और सर अभी जैसे हम बात कर रहे हैं आज की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, तो आयुर्वेदा में स्पेसिफिक इसके लिए कुछ मतलब ऐसे जैसे आपने एक्सरसाइज बताई है अभी कुछ और चीजें ऐसी हैं।
0: देखिए आयुर्वेद में हम जो है जैसे मान लीजिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में थोड़ा सा स्वेलिंग आती है तो उसके लिए हम पुनर्वादी गूगल है, मंडूरादि गूगल है, ये आप पुनर्वा मंडूर है, पुनर्वासो है, ये ऐसी चीजें दे सकते हैं, साथ में पेन के लिए हमारे पास बाम भी आता है, ऑयल भी आते हैं, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं।

0: खाने पीने में, अगर हमने देख रहा तो अगर आवश्यक है तो हम उसके लिए लाक्षादी गुगल आता हमारा जो हड्डियों को मजबूत करता है वो दे सकते हैं
1: जी। एक डॉक्टर साहब अभी मैसेज हमारे पास आया है जिसमें नरेंद्र श्रीवास्तव हैं पटियाला से, कहते हैं गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, और मैं ये कहते हैं कि मैं सीधा सोता हूं और लेफ्ट शोल्डर की तरफ गर्दन में कभी कभी तेज और कभी हल्का दर्द होता है, क्या ये सर्वाइकल हो सकता है?
0: देखिए सीधा सोने में एक्चुअली पूरे रात तो सीधा नहीं सोना चाहिए, करवट तो बदलना चाहिए आदमी को, क्योंकि एक पोजिशन में आप रहते हैं तो बॉडी जो है थोड़ा रेज हो जाती है, तो कभी सही तरीका तो ये है आप पहले सीधे लेटिए फिर राइट को लीजिए उसके बाद लेफ्ट को लेकर सोइए आप, तो सही जो प्रॉपर आयुर्वेद में जो तरीका बताया सोने का उसको इस्तेमाल करिए ना आप। आप एकदम क्यों ऐसे रहते हैं जैसे आदमी, अब क्या कहें, मतलब जैसे मान लीजिए कोई आदमी ऐसा एक पोजीशन में रहेगा तो खंभे की तरह हो जाएगा, तो इसलिए पोजीशन बदलना जरूरी है। और जहां पर अगर पेन है तो उसके लिए आप कोई भी आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हैं, बहुत दवाई आती है आयुर्वेद में पेन के लिए, आते हैं ऑयल आते हैं बहुत, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा ठंडी चीज खाने का अवॉइड करिए आप
1: जी। आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं डियर डॉक्टर में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। तो स्पॉन्डिलाइटिस की जो हम बात कर रहे हैं, सर्वाइकल की बात कर रहे हैं, इससे संबंधित आपकी कोई भी समस्या या प्रश्न हो, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, तो डॉक्टर बीएस डबास जी से हम आपका वो जो सवाल है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको एक अच्छा सा सॉन्ग सुनवाते हैं।

0: रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप और आज इसमें हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर बीएस डबास जी। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो।
1: हाँ जी, हेलो
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में।
1: हाँ जी, मैं हरपाल सिंह सैनी बोल रहा हूँ, गाँव सोनपुर से।
0: जी जी, सवाल पूछिएगा।
1: सवाल मेरा ये है, तो कमर में दर्द होता है, धीरे धीरे सीधा होता हूँ मैं।
2: आगे आगे झुकने से बढ़ता है क्या?
1: जी, आगे झुकने से मेरा, जैसे नींद मेरा खेती का काम करता हूँ जी मैं।
2: वो तो ठीक है, पर जैसे आप आगे की तरफ झुकते हो कोई काम करने के लिए तो क्या दर्द बढ़ जाता है क्या?
1: हाँ, कमर में नीचे की तरफ दर्द बढ़ता है, फिर धीरे धीरे सीधा हूँ।
2: हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपके ना डिस्क की प्रॉब्लम है, कोई नस आपकी दबी हुई है वहाँ पे, उसके लिए आप जो करते थे ना, जैसे पहले दंड लगाते थे, दंड लगाते थे, समझ रहे हो, दंड लगाना, तो ऐसे ही मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ। अगर आप अभी घर में हैं तो दीवार के सीधे खड़े हो जाइए और अपने कंधों के सीध में दीवार पे दोनों हाथ रखिए।
1: अच्छा जी,
2: रखिए,
1: ठीक है जी।
2: और पैरों से दूर हो जाइए दीवार से, जैसे जैसे सीढ़ी होती है, जो जीना होता है लकड़ का, इस पोजीशन में खड़े हो जाइए।
1: अच्छा जी,
2: समझ रहे हैं मेरी बात आप?
1: हाँ जी, बिल्कुल।
2: अभी अभी इस पोजीशन में खड़े हो गए आप, आपके हाथ दीवार पर हैं और पैर आपके दीवार से दूर हैं, ठीक है, तिरछे खड़े हो गए ना आप, ऐसे जैसे सीढ़ी की तरह। आप गर्दन को ऊपर उठाइए, गर्दन को ऊपर उठाइए और पीठ को आगे की तरफ दबाइए, बीच का हिस्सा जो पीठ है उसको आगे की तरफ दबाइए, तो इससे आपको जो है कमर में थोड़ा खिंचाव आएगा। गर्दन ऊपर उठाने से सर्वाइकल में आराम आएगा और जब पीठ को आगे दबाएंगे तो कमर में थोड़ा खिंचाव आएगा। कर रहे हैं आप ऐसे? कर रहे हैं क्या अभी?
1: हाँ जी, कर रहा हूँ, कमर में
2: खिंचाव। हाँ, तो अभी इसी पोजिशन में खड़े रहिए, थोड़ी देर में ये थोड़ा सा आपको खिंचाव बढ़ेगा और जैसे ही आपको खिंचाव बढ़ने लगे, फिर 10 तक, 20 तक, 30 तक, जैसे आपकी हिम्मत हो, इतनी काउंटिंग करनी, इतनी गिनती करनी है और उसके बाद में हट जाइए। फिर आराम से 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट करिए, उसके बाद दोबारा करिए। ऐसे आप 5 बार सुबह, 5 बार दोपहर, 5 बार शाम को करो तो आपको काफी हद तक आराम आ जाएगा। रही बात दवा की, अगर आपको दर्द है तो आप कोई भी आयुर्वेदिक तेल ले सकते हैं, महानारायण तेल आता है, पंचगुण तेल आता है, पिंड तेल आता है, उसको कमर पे लगाना। पर ध्यान रहे, कमर में जहां पे आपको पेन है ना, वहां पे उस तेल को रमाना है, वहां मालिश नहीं करनी, रगड़ा नहीं मारना तेल का, वहाँ हल्के हाथ से तेल को रमाना 15 मिनट तक। आपके घर में कोई बच्चा हो या आपकी वाइफ हो, तेल को थोड़ा सा गर्म करें और वहां पे बेहतर है कि आप एक जो है उड़द के आटे का एक गोल चक्कर बना लें और जहां पेन है वहां पे उस तेल को भरें। हल्का गर्म रहना चाहिए, जला मत लेना, तो उसको फिर जैसे तेल ठंडा होने लगे तो दूसरा तेल चेंज कर दें किसी चम्मच से, फिर उसको रखें, ऐसा 45 मिनट कंटिन्यू करें आप। दूसरा, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होता, कब्ज तो नहीं रहती? कब्ज नहीं रहती तो बहुत अच्छी बात है। अगर कब्ज रहती है तो अरंडी का तेल आप ले सकते हैं, ठीक है, आपको रिलीफ हो जाएगा। आप आराम करिए आप, और आगे झुकने की कोशिश मत करिए। अगर आपने नीचे कोई सामान गिरियार उठाना है तो बैठ के उठाइए, आप बैठ के खड़े हुए, झुक के नहीं उठा, झुकना नहीं आगे, ठीक है, आपको आराम आ जाएगा, ये 100% आराम आएगा इससे। आप
0: बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया।
2: हाँ जी,
0: हमारे साथ दोस्तों अगले कॉलर लाइन पर है, देखते हैं उनका क्या सवाल है।
1: हेलो।
0: हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, सवाल पूछिएगा।
1: अच्छा मैडम जी को, रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार चड्डा जी, सवाल पूछे आप प्लीज, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको।
1: डॉक्टर जबाज साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार जी, नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है।
2: जी सर, बोलिए।
1: अगर किसी पर्सन को ये कंफर्म हो जाए कि उसको सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस है तो उसको स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, या मोबाइल देखना, या लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करना, या फिर टाइम शॉर्ट कर देना चाहिए?
2: देखो, ऐसा है, ये तो चीज पॉसिबल नहीं है, कोई बिल्कुल कंप्यूटर काम नहीं करेगा, मोबाइल नहीं देखेगा, पर उसकी अपनी पोजीशन बदले। जैसे मोबाइल देख रहा है तो ऊपर उठा के देखे मोबाइल को, गर्दन झुका के ना देखे। अगर कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो इसको जो आपका पैड है उसको टेढ़ा ऊंचा उठाए आगे, है ना, जैसे आपने किसी ऑफिसर की टेबल पे देखा होगा, लगा होता है तो उसको ऊंचा उठा के काम करे। पर ये ना कंटिन्यू काम ना करे, जैसे आपने उसे आधा घंटा काम किया, उसके 5 मिनट घूम लो, उसके बाद फिर कर लो काम, और बीच में जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी आपको उसको करिए आप, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। बाकी मैंने जो एक सिंगल एक्सरसाइज बताई है, आपने शायद सुनी होगी, वो सर्वाइकल के लिए बेस्ट है, 99.9% लोग ठीक हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ आप खुद करेंगे ऐसे तो आपको रिलीफ मिलेगा, औरों को कराएंगे तो और भी ठीक हो जाएंगे, ये किस्म से आप सर्वाइकल के डॉक्टर बन जाएंगे विदाउट एनी मेडिसिन, ये हमारी गारंटी है ठीक करने की, हम करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, ये
1: डॉक्टर साहब,
2: हाँ जी,
1: जय हिंद।
2: जय हिंद
0: जी, बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, यहाँ पे दो चीजें मन में आ रही हैं इस समय, एक तो ये कि आपने कहा कि दिन में 5 बार करना, सुबह शाम करना, तो इसमें खाने पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका पेट भरा हुआ कुछ है उससे कोई इसका फर्क नहीं,
2: सर्वाइकल को प्रॉब्लम आती है।
0: अच्छा जी, तो कभी भी ये किया जा सकता है?
2: कर सकते हैं।
0: ओके, और ये अगर पेन ठीक हो जाता है तो उसके बाद कंटिन्यू करना होता है, छोड़ दें उसके बाद?
2: करते रहो, कभी कभी तो करते ही रहो,
0: तो बॉडी की स्ट्रेचिंग होती रहेगी,
2: क्योंकि एक्चुअल में क्या है, मूवमेंट बंद होगी, लोग पहले खेलते थे, कूदते, सब कुछ, अब सब है नहीं,

0: आदमी उठता है, गाड़ी में बैठा या जैसे भी गया, कंप्यूटर बैठ के जाके या मोबाइल सबके पास है, मोबाइल पर लगा रहता है वो। एक घर में चार आदमी, चार मोबाइल हैं, आपस में नहीं बात कर पाते हो। देखिए इंटरटेनमेंट ही बहुत जरूरी है लाइफ में, इंटरटेनमेंट सबसे जरूरी है। मैं आपको बता दूं, लोग शादी के बाद में जो घर में रहते हैं हंसना भूल जाते हैं, हंसना बहुत जरूरी है।
1: चलिए हमारे पास अगले जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको हम शामिल कर लेते हैं।
0: जी
1: मुकेश जी हैं ये दिल्ली से, इनकी उम्र 35 वर्ष है डॉक्टर साहब, और ये कहते हैं कि गुड आफ्टरनून, मुझे साइटिका का बैक पेन हुआ था लास्ट ईयर, और अब मैं जब बाइक चलाता हूं और या किसी सॉलिड जगह पे बैठता हूं तब पेन होता है बैक में, शोल्डर पेन है 2 साल से, और सोने के वक्त कंधे दर्द होते हैं, लेफ्ट या राइट सीधा भी नहीं होता, सो पाता हूं मैं, मतलब ऐसा ये कहना चाह रहे हैं।
0: देखिए ऐसा जहां तक ये आपको लेग में जो पेन जा रहा है, तो आपकी जो नस है रीढ़ की हड्डी में जो है दबी हुई है, डिस्क प्रॉब्लम है आपको। कंधे में आपको पेन है तो हो सकता है आपको फ्रोजन शोल्डर की शिकायत हो या सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी हो। सर्वाइकल का मैंने आपको इलाज बता ही दिया जैसे करना है सारा बताया, और डिस्क वाला भी मैंने बता दिया, अभी एक पेशेंट को बताया था आपने शायद सुना भी होगा। अगर पेन ज्यादा तो आप दवाई ले सकते हो। रही बात आपकी मोटरसाइकिल पर जाने की, क्योंकि मोटरसाइकिल पर झटका लगता है, अगर डिस्क वाला प्रॉब्लम है तो आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, आप या तो गाड़ी में जाइए या मेट्रो में जाइए, जैसे जो व्हीकल हो, पर आप इसमें अगर चलेंगे तो झटका लगेगा, जहां भी झटका लगेगा। अगर आपने पैर आपका ऊंचे नीचे चला जाएगा, मान लीजिए गांव में जैसे ढेल होती है ऊंची, अगर आपने वहां झटका लगाया तो एकदम आपको पेन बढ़ जाएगा। इसलिए आपको प्लेन जगह पे चलना है और स्लो चलना है, तेज नहीं चलना, तो ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, तब आप ठीक होंगे।
1: ओके अच्छा, ये भी बड़ी बात आपने कही कि एक्सरसाइज करने के टाइम पे हम सोचते हैं ज्यादा तेज चलने से शायद फायदा होगा, तो जब पेन है तब तेज नहीं चलना, आप ये कह रहे हैं। ओके तरुण कुमार हैं छत्तीसगढ़ से, आप लिखते हैं कि सर आपसे पूछ रहे हैं सवाल ये कि सर जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय गलत एक्सरसाइज हमारी पीठ में उसकी वजह से दर्द हो जाता है, जो पीठ में दर्द होता है एक्सरसाइज करने से, उस दर्द को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। साथ ही इनका एक और सवाल है कि हम ऊंचे ऊंचे तकिए जो है वो सोने के समय ले लेते हैं तो उससे गर्दन में दर्द की शिकायत हो जाती है, तो क्या ये दोनों चीजें एक्सरसाइज करके ठीक की जा सकती हैं, दर्द ठीक किया जा सकता है?
0: देखिए जिस भी एक्सरसाइज से आपको दर्द बढ़ रहा है उस एक्सरसाइज को छोड़ दीजिए, सोने के लिए जो तकिया इस्तेमाल कर रहे हैं तकिया को हटा दीजिए आप, तभी आपका सुधार हो सकता है, तभी आप ठीक रहेंगे। अगर आपने गलत एक्सरसाइज करोगे तो तकलीफ बढ़ेगी, ठीक कहां से हो जाएगी? ठीक वाली बात तो मैंने आपको बताई है, सर्वाइकल की मैंने बता दी, डिस्क की मैंने बता दी आपको, उसको तरीके से करिए ना, आपको आराम आएगा। अगर गलत पोस्चर होगा और गलत एक्सरसाइज करेंगे तो फिर तो भगवान ही ठीक कर सकता है भाई, इंसान के बस का तो है नहीं।
1: दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रेडियो डॉक्टर में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, हमारे साथ हैं डॉक्टर बी एस जबाजी और मैं हूं आपकी दोस्त तपस्या। ये सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है सर्वाइकल से रिलेटेड तो उसका आप समाधान हमारे डॉक्टर साहब से पा सकते हैं। डॉक्टर बी एस अब्बास जी हमारे साथ हैं और मैं हूँ आपकी दोस्त तपस्या, और हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पर, देखते हैं कौन है और क्या है उनका सवाल। हेलो
2: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो डॉक्टर में।
2: जी नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार करता हूँ। अविनाश महावरा बोल रहा हूँ, गाँव सन्नौट दिल्ली 40 से।
1: जी
3: नमस्कार जी, नमस्कार बोलिए
1: जी, सवाल पूछिएगा।
2: साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा देर से ट्यून कर पाया हूँ, एक बार एक्सरसाइज बता दीजिए सर्वाइकल की दोबारा से।
3: ठीक है बता देता हूँ, जरा सुनिए ध्यान से, और भी कुछ लिसनर हो भी जरा देख लें। देखिए आप सीधे खड़े हो जाइए, दोनों हाथ सामने करिए जैसे पीटी में करते हैं, हथेली नीचे की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद दोनों हाथ वहीं से सीधे साइड में लाइए, हथेली नीचे रहें।
2: हाँ जी।
3: उसके बाद दोनों हाथ पीठ के पीछे जाएंगे बटक्स के ऊपर, और हथेली मिलाइए आपस में, लॉक करिए। लॉक कर दिया, सीधे खड़े रहिए, झुकना नहीं है पीछे की तरफ, और दोनों हाथों को पूरा नीचे खींचिए, पूरी ताकत हाथों में डाल दीजिए। अब हाथ ढीले नहीं करने जब तक मैं ना कहूँ। अब गर्दन को पीछे लीजिए, गर्दन चलेगी पीछे।
2: हाँ जी।
3: अब 30 तक काउंटिंग करिए, 30 तक मतलब आधी मिनट।
2: ठीक है जी, 30 तक हो जाएगा।
3: 30 तक काउंटिंग हो जाए तो पहले गर्दन सीधी करिए, फिर हाथों को धीरे धीरे ढीला करिए और साइड में लाइए। यहाँ 7 तक काउंटिंग करिए, फिर आगे लाइए सामने की तरफ।
2: हाँ जी।
3: यहाँ 7 तक काउंटिंग करिए।
2: ठीक है।
3: उसके बाद हाथ नीचे कर लीजिए और बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और बैठ जाइए। 2 मिनट या 5 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर दोबारा करिए आप। ऐसे 5 बार करो, अभी अभी हम रेडियो प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, 5 बार करते ही आपको रिलीफ मिलेगा। और आप अपने मुंह से बोलना, बताना हमें क्या मिला नहीं मिला। मैं दावे साथ करता हूँ आप 100% बोलेंगे हाँ मुझे रिलीफ मिला है, करके देखिए प्लीज। थैंक यू,
1: बहुत शुक्रिया। अब हमारे पास डॉक्टर साहब कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं। रेनू है दिल्ली से, आप लिखती हैं व्हाट आर द एक्सरसाइजेस फॉर फ्रोजन शोल्डर। तो इनके जो कंधे हैं वो फ्रोजन मतलब हो चुके हैं, जकड़ चुके हैं, तो वो उनको उनके लिए पूछने को एक्सरसाइज अगर हो तो आप बताइए प्लीज।
3: हाँ, एक्सरसाइज है आपके ना, कंधों की मूवमेंट करिए आप। ये तो ये है, आप दोनों हाथ कंधों पर रखिए और उनको घुमाइए, आगे की तरफ घुमाइए, फिर रिवर्ट को वापिस घुमाइए। पहली मूवमेंट तो यही है, फिर दूसरा जो है सामने की तरफ आगे ताली बजाइए, पीछे बैक में पीठ में ताली बजाइए। ठीक है, और हाथों को घुमाइए आगे की तरफ और पीछे की तरफ घुमाइए, एक्सरसाइज करिए आप। एकदम ज्यादा नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी करिए, पर कई बार करिए आप। जो फ्रोजन शोल्डर है आपको आराम आ जाएगा, और लगाने के लिए कोई भी हमारा ऑयल लगा सकते हैं, आयुर्वेदिक ऑयल। मैंने बताया नाम, महारान तेल है, पंचकुण तेल है, पिंड तेल है, क्षीरबला तेल है, बहुत सारे तेल है, वो लगाए उसको, और उसको हल्के हाथ से मसाज करना है उसका, वहां तो हल्का सा प्रेशर डालना है। तो ऐसा आप जो है कम से कम 15-15 मिनट एक कंधे पर करना है, ऐसे करिए। ठंडी चीज अपनी सारी अवॉइड कर दीजिए, जो भी खाने वाली चीजें, चावल, दही, लस्सी, मूली, नींबू, फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स। एसी में, एसी को अवॉइड करिए, और एसी में जरूरी है तो 28 में चलाइए उसको, ज्यादा ठंडा होगा तो आपका पेन बढ़ेगा। दूसरा जो वायुवर्धक चीजें जैसे मटर है, गोभी, राजमा, छोले, उड़द दाल, बैंगन का थोड़ा अवॉइड करिए। अगर आलू की सब्जी खाते तो आलू को उबालिए, पानी फेंक दीजिए, फिर खाइए, कच्चे आलू से मत बनाइए। तो ये आप प्रिकॉशन लेंगे आपको ठीक हो जाएगा, ये हमारी गारंटी ठीक करने की। करिए सही आप जरा।
1: यहाँ पर दो चीजें मैं आपसे और पूछती चलूं, आपने तेल का कई बार जिक्र किया और आपने कहा उसको गर्म करके लगाना चाहिए, तो कोई भी तेल जब हम लगाते हैं तो गर्म करके ही लगाया जाए,
3: उसका एक्शन जल्दी होता है, ज्यादा होता है
1: जी,
3: फास्ट एक्शन हो जाएगा। और ठंडा लगाएंगे तो फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर
1: जी। और दूसरा
3: एक और इम्पोर्टेंट बात है, तेल कभी डायरेक्ट गर्म मत करिए, पहले पानी में उबालिए किसी भी पतीले में, उसमें दूसरे एक बर्तन में डालकर तेल रखिए। ऐसे तेल गर्म करना चाहिए, तेल बार बार करने से, गर्म करने से उसे कार्सिनोजेनिक हो जाता है, उससे कैंसर होने का खतरा रहता है। अब मैं देख रहा हूं बहुत से सेंटरों में वो तेल को डायरेक्ट गर्म कर रहे हैं और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य इन चीजों का। मैंने पंचकर्मा केरल से किया हुआ है, तो वहां मैंने बड़ा अच्छा सिस्टम देखा केरल में, वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। पर मैं यहां दिल्ली में देख रहा हूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी मैंने पंचकर्मा हॉस्पिटल सेंटर जो खुले हुए सब डायरेक्ट तेल गर्म कर रहे हैं, जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, फ्यूचर में आपको कोई बीमारी आ सकती है।
1: तो आप ये कह रहे हैं जो सर में हेड मसाज की जाती है वो भी तेल गर्म करते रहे, गर्म पानी में रखा जाए।
3: सिर में हल्का, सिर में ज्यादा गर्म तेल इस्तेमाल नहीं होता, हल्का कोसा तेल लगा सकते हैं
1: जी, तो वो सीधा आंच पे रखा जा सकता है।
3: आंच पे रखना ही नहीं तेल कोई भी,
1: वही हम आपसे कह रहे हैं।
3: हाँ, नहीं रखना आंच पे, तो तेल गर्म करना ही नहीं चाहिए कोई भी
1: जी। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ है, उनको हम लेते हैं जरा। हेलो
4: नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार,
4: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
4: सर मैं ये पूछना चाह रहा था, एक्चुअली मेरा मार्केटिंग का जॉब है और मैं गाड़ी ड्राइव ज्यादा करता हूँ
3: जी।
4: तो अभी लास्ट टाइम लगभग 10 दिन पहले मेरे साथ इतफाक ऐसा हुआ कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था और मेरे को काफी ज्यादा चक्कर आ गए थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था।
3: देखो चक्कर आने के
4: सर्वाइकल की वजह से
3: देखिए आपका जॉब क्या है, कोई कंप्यूटर पे काम करते हैं, ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं?
4: मेरा कंप्यूटर का नहीं है, मार्केटिंग में इंडस्ट्रीज में जाता हूँ, फैक्ट्री वगैरह में।
1: आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम प्लीज बताइएगा और कहाँ से बोल रही है बताइए।
4: मैं मेरठ से बोल रहा हूँ, वीरेंद्र शर्मा मेरा नाम है।
1: जी जी,
3: देखिए ऐसा होता है चक्कर आने के बहुत सारे कारण होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर का भी कारण हो सकता है, आपको हीमोग्लोबिन कम होता भी चक्कर आ सकते हैं, और सर्वाइकल उसमें भी चक्कर आ सकते हैं। ये तो आपको करना पड़ेगा कि क्या क्यों चक्कर आ रहे हैं, अपना हीमोग्लोबिन
4: खून। मेरे को फर्स्ट टाइम हुआ है।
3: नहीं, कोई भी चीज होती है फर्स्ट टाइम होता है, बच्चा फर्स्ट टाइम पैदा होता है, तो ये सब काम फर्स्ट टाइम होते हैं, कोई बीमारी आए चाहे कुछ भी तो फर्स्ट टाइम होता है सारा, सेकंड टाइम तो बाद की बात होती है। तो मैंने बोल दिया आपको सर्वाइकल के लिए, मैंने बता दिया एक्सरसाइज करिए आप, अगर आपको सर्वाइकल होगा तो रिलीफ हो जाएगा 100%। अगर मान लो कोई और वजह होगी चक्कर आने की तो फिर आपको और जांच करानी पड़ेगी अपनी।
1: तो डॉक्टर साहब कुछ क्या जांच करवानी चाहिए, कुछ इनको सलाह दे पाएंगे आप?
3: हाँ, जांच करा सकते हैं आप भाई, पहले तो आप हीमोग्लोबिन चेक, अपना एचबी हीमोग्लोबिन चेक करा लीजिए, अपना ब्लड प्रेशर भी आप चेक कराइए, अपनी आंखों भी आंखें आई साइड भी आप चेक कराइए, ठीक है? ये सारी छोटी मोटी चीजें तो चेक करा लीजिए, फिर आगे अगर ये सब नॉर्मल मिलती तब आगे के बारे में सोचेंगे।
1: जी बिल्कुल, हमारे साथ।
3: और घर में अगर आप खाली पेट जा रहे हैं तो उसके वजह से भी माल न्यूट्रिएंट से भी चक्कर आ सकते हैं, खाना भी आपको टाइम से खाना चाहिए जरूरी।
1: ओके, अच्छा खान पान से भी फर्क पड़ता है?
3: मैडम सारे पड़ता है, खान पान सारा ही तो है।
1: ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि खाना जो है प्रॉपर तरीके से
3: टाइम से खाना खाना
4: चाहिए। खाना पीना तो मैं समय से लेता हूँ।
1: जी जी,
4: मुझे जरा सी एक जानकारी हो, यदि आपके पास समय हो तो दे पाएंगे?
1: जी पूछिएगा।
3: ये
4: जी एक्चुअली में मैंने ये तो चक्कर आने की समस्या हुई है, कभी आपने आप लोग भी सफर करते होंगे
3: जी,
4: तो जैसे हम लोग स्टेशन पे जाते हैं आपको लगता है बराबर वाली ट्रेन चल रही है।
3: हाँ जी,
4: और जबकि वो खड़ी रहती है।
1: आप सवाल पूछिएगा प्लीज जी।
4: ये मेरे को मतलब ट्रैफिक में भी कई बार ऐसा हो जाता है जब जाम में मेरी गाड़ी रुकी हुई होती है।
3: हाँ हाँ, तो ऐसी ऐसी फीलिंग होती है।
4: हाँ हाँ हाँ, बराबर में गाड़ी चल रही है और मेरा कई बार ब्रेक पे पैर चला जाता है कि गाड़ी चल रही है जबकि ट्रैफिक बंद है।
3: तो उसके लिए ना अपना हमारी दवाइयां आती है आयुर्वेद में, जैसे शंख पुष्पी आता है, ठीक है, अश्वगंधा आता है, अश्वगंधा आता है, लिक्विड भी आता है, पाउडर भी आता है, आप उसको लीजिए। आप उसको खाली पेट शंख पुष्पी सिर्फ लीजिए आप, और अश्वगंधा आप दूध के साथ लीजिए।

0: पाउडर है तो, और पीने वाली है तो खाने के बाद पीजिए, चार चम्मच दवाई चार चम्मच पानी में लग लीजिए, आपको रिलीफ हो जाएगा
1: जी। डॉक्टर साहब ये
2: रीजन क्या सर,
1: वीरेंद्र जी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इसके लिए एक बार टेस्ट करवा लीजिए तो शायद आपको स्पष्ट हो पाएगा, ब्लड प्रेशर का जैसे वो कह रहे हैं, हीमोग्लोबिन का भी कह रहे हैं, कुछ चीजें हैं आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अगर सर्वाइकल का है तो कुछ एक्सरसाइजेस बताई गई हैं, अगर आप उनको कर पाए तो शायद आपको रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब ये केडी त्रिपाठी है, 70 वर्ष अपनी आयु बता रहे हैं, रांची से इनका मैसेज आया है। ये पूछ रहे हैं कि आयुर्वेद के अनुसार कौन कौन सी कसरत करने से सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस से बचा सकता है, वो आप कई बार बता चुके हैं, तो हमें लगता है केडी त्रिपाठी जी आपको शायद अब तक इसका समाधान मिल गया होगा। अभी हमारे पास बहुत सारे और मैसेजेस आ रहे हैं, तो पीलीभीत से तिलक जी हैं, लिखते हैं मेरी दीदी की उम्र 47 वर्ष है, उनके पैरों के खुर्द में बहुत दर्द रहता है और दर्द के कारण वो चल भी नहीं पाती, तो ऐसे में उनको आराम के लिए हम क्या कर सकते हैं?
0: पीठ में दर्द रहता है?
1: नहीं, पैरों में।
0: पैरों में जी, पिंडलियों में दर्द होता है।
1: हाँ, इन्होंने लिखा यह है कि उनको दर्द रहता है खुर्द में। खुर्द क्या होता है ये आप तो आप मोटे तौर पे वैसे ही बता दीजिए, अगर पांव में दर्द है तो कैसे रिलीफ मिल सकता है?
0: खुर्दो शायद नीचे तलवे को बोलते
1: होंगे। हाँ जी, हो सकता है जी।
0: और तलवे के लिए जो है आप अश्वगंधा पाउडर आता है हमारा, उसको एक गिलास दूध में डालिए, एक चम्मच पाउडर, एक गिलास पानी डालिए, मंद आंच पे पकाइए, उसके जब पानी जल जाए, दूध उध जाए उसके लिए बस, तो आराम आएगा। और एक तेल का मसाज करिए, पिंड तेल का करिए या पंचीकुण तेल का करिए, आराम आएगा आपको
1: जी। ये डॉक्टर साहब एक और मैसेज हमारे पास आया है, ये कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम, मेरा इनका जो एक कंधा है वो कहते हैं वो झुका रहता है, कभी लेफ्ट की तरफ कभी राइट की तरफ, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया तो वो कह रहे हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेढ़ेपन की शिकायत है, तो इसमें कुछ किया जा सकता है के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है, कोई सोल्यूशन?
0: देखिए कभी आपका लेफ्ट का झुक रहा है कभी राइट का झुक रहा है, इसलिए आपने, कितनी उम्र है आपकी?
1: इसमें उम्र इनकी नहीं लिखी है,
0: मैसेज है। इसके लिए जो पहले दंड लगाते थे, दंड लगाते थे, आप दंड लगाइए, आपके कंधे दोनों पे बराबर प्रेशर पड़ेगा और आप ठीक हो जाएंगे जी, कर सकते हैं आप आराम से।
1: अच्छा, ये ललित भाटिया जी का एक सवाल डॉक्टर साहब हमारे पास आया है अहमदाबाद से, 65 साल अपनी उम्र बता रहे हैं और कह रहे हैं डॉक्टर साहब मैडम आपको धन्यवाद, सही जवाब हमें मिल रहे हैं, इनको हर्निया और बवासीर की प्रॉब्लम है, तो इन्हें क्या करना चाहिए अगर सर्वाइकल है तो?
0: देखिए हर्निया के लिए तो ये है कि भाई हर्निया क्यों होता है, हर्निया का एक हर्निया एक तो अम्बिलिकल हर्निया है और दूसरा इंग्वेलन हर्निया जो कॉमन होते हैं, तो अम्बिलिकल हर्निया का तो हम वैसे इलाज कर देते हैं आयुर्वेद तरीके से, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बच्चों में कॉमनली होता है, कई बार बड़ों में होता है, पर वो लोग सर्जरी के लिए पहुंच जाते हैं तो सर्जरी हो जाती है उनकी। दूसरा जो है इंग्वाइल हर्निया है, उसके लिए आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आप जोर लगा रहे होंगे तो इंग्वाइल हर्निया बढ़ेगा, खांसी होगी तो प्रेशर पड़ेगा तो बढ़ेगा, और आपको जो है वजन उठाओगे तो भी बढ़ेगा, इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए, कब्ज मत होने दो कभी भी, खांसी हो तो फौरन दवाई लो, और जहां पे आप प्रेशर आ रहा है वहां पे हाथ रखो। आपकी जो आजकल जो मॉडर्न टॉयलेट आई हुई है इंग्लिश टॉयलेट, ये हर्निया पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें आदमी सीधा बैठता है, प्रेशर डालता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो पोटी तो उसको आती नहीं है, वो प्रेशर साइड में जाता है, तो वहां जहां भी झिल्ली कमजोर होती है हाथ की, वहां से हाथ बाहर आती है, हर्निया बन जाता है। इसलिए देसी सीट टॉयलेट सीट का इस्तेमाल करिए, हर्निया नहीं होगा। कब्ज में तो होने दीजिए, कब्ज है तो आप आयुर्वेद में बहुत दवाइयां आती है। वैसे तो कब्ज का सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह उठकर आप 1 से 1.5 लीटर जल हल्का गर्म करके बैठ पीजिए, आधा घंटे पेट साफ हो जाएगा आपका, कब्ज रहेगी नहीं। हम तो दवाइयां देने की पक्ष में भी नहीं है, आप ऐसे पानी से ही पेट साफ हो सकता है, सबसे अच्छा तरीका है ये, और ये आप ऐसा करिए तो आपको कब्ज नहीं होगा। हर्निया के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर हर्निया की स्टेज ज्यादा आ गई तो हो सकता है फिर ऑपरेशन करना पड़े, पर अगर स्टार्टिंग होता है तो हमारे पास आए हम ठीक कर देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब बहुत से सवाल हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन आपने पानी की जो बात की, बहुत बार ये कहा जाता है कि बहुत लोग, हर किसी का बॉडी अपना टाइप अलग होता है, तो उनको ज्यादा पानी का इंटेक नहीं लेना चाहिए या पानी किसी को सूट नहीं करता, तो ये सबके लिए नियम एक जैसा है 1.5 लीटर पानी 1 लीटर
0: पानी पीने में? अगर किसी को दिक्कत है तो पानी में अगर किसी को नींबू सूट करता है तो नींबू डाल सकता है, अगर किसी को पानी फीका पानी पीने मुश्किल है तो थोड़ा सा उसमें दूध डाल सकता है। पानी पीने आप एकदम नहीं पी सकते तो एक एक मग्घा करके आधा आधा लीटर दिन में तीन उस मॉर्निंग में 3 बार पी लीजिए, 15-15 मिनट का गैप देके पी लीजिए, 1.5 लीटर पानी आपके पेट में जाएगा। तो पानी का जो प्रेशर, जैसे आप फ्लैश चलाते हैं तो मल कैसे जाता है, फ्लैश चलाने से मल अंदर जाता है ना आगे, ऐसे ही आप ऊपर से पानी डालेंगे तो उसका प्रेशर आएगा और पोटी को नीचे सरका देगा, पेट साफ हो जाएगा, सबसे आसान तरीका है
1: जी। डॉक्टर साहब ये कामत है दिल्ली से, उम्र अपनी 30 साल बता रहे हैं, ये लिखते हैं दोनों हाथों के जो कंधों का जो है इनका दर्द बना रहता है दिन भर और कमर में लोअर बैक में भी पेन रहता है पिछले 1.5 साल से, आयुर्वेद में कोई तेल या कोई योग या उपचार हो तो कृपया बताएं।
0: देखिए तेल तो मैंने बताए कई बार बता चुका मैं, बहुत सारे तेल आयुर्वेद में आप उसको लगा सकते हैं, थोड़ा हल्की सी एक्सरसाइज करें, और कमर में जो लोअर बैक में पेन है वो अगर आगे झुकने से बढ़ रहा है पेन, तो बताइए अब मैसेज है क्या, तो आगे झुकने से बढ़ रहा है तो इसका मतलब डिस्क की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और आगे झुकने से नहीं, बाकी मैंने एक्सरसाइज बताई अभी ऑनलाइन बताया मैंने समझाया, आप वो एक्सरसाइज करिए आपको आराम आ जाएगा। और कब्ज में तो होने दीजिए, अगर कब्ज है तो उसके लिए जरूर आपको दवाई लेनी पड़ेगी, ताकि कब्ज दूर

0: और एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज भी मैं अगर आप सुन रहे होते तो मैं आपको समझा देता अभी, ऐसे तो क्या फायदा, ऐसे ऐसे नहीं समझ पाएंगे तो कुछ फायदे नहीं करने का, तो एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाता है। बाकी बेस्ट तरीका यही है कि आप खाना पीना सुधारिए अपना, ठंडी चीज अवॉइड करिए, एक्सरसाइज करिए।
1: जी, तब तक एक गीत सुनते हैं।
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health@airdelhi@gmail.com पर।

0: अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों आप सुन रहे हैं इस समय रेडियो डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, किसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। डॉक्टर बी एस जबास जी आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं, समय थोड़ा कम है। डॉक्टर साहब, ये साहिल जी हैं मेरठ से, कहते हैं मेरे पैरों के तलवों में दर्द रहता है, क्या करूं, उम्र इनकी 27 साल है।
1: तलवों में दर्द का हमने अभी बताया था आपको कि एक तो तेल की मालिश करें आप, दूसरा अगर मान लीजिए आपको तलवा ऐसा भारी भारी लग रहा है आपको, तो अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच और 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी उसको मंदी आंच पे पकाएं और उसके बाद जो दूध दूध रह जाए उसको आप पिए और बस इससे आराम आ जाएगा आपको
0: जी। अगले हमारे जो मैसेज जिन्होंने भेजा है वो है राहुल दिल्ली से, आप कहते हैं और सर मेरा नाम राहुल है और मेरे पेट में हमेशा, इनका पेट जो है वो टाइट रहता है, कुछ भी खाता हूं तो एकदम पेट टाइट हो जाता है पत्थर की तरह और मैं अल्कोहलिक हूं, ये इन्होंने लिख के भेजा है, तो आप कुछ इसके बारे में।
1: देखिए अब अल्कोहलिक है तो हो सकता है आपका फैटी लीवर भी हो 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड, तो पहले तो आप अल्कोहल छोड़िए, अपना एक बार अल्ट्रासाउंड कराइए, पता लगेगा वाकई में आपका लीवर फैटी है तो लीवर फैटी की दवाई लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और हल्का खाना खाइए, आमतौर पर घिया तोरी टिंडा सीताफल ये सब्जियां खाइए, हैवी खाना बंद कर दीजिए, राजमा है, छोले है, आपके पनीर है, ये सब बंद करिए आप।
0: अच्छा, पनीर से भी प्रॉब्लम होती
1: है? पनीर तो आजकल सारा ही मिलावटी आ रहा है, तो जहरी मिल रहा है, क्या कर सकते हैं
0: जी। अगले ये अरविंद जी हैं यमकेश्वर से, पौड़ी गढ़वाल से, उत्तराखंड से इन्होंने भेजा संदेश और ये कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम, प्लीज बताएं कि डॉक्टर साहब से पूछें कि कौन सा वेट गेनर जो है

0: लेना चाहिए आयुर्वेदा के लिहाज से, जिससे वेट गेन कर सके।
1: अगर वेट बढ़ाना चाहते तो अश्वगंधा है हमारे पास, सतावर है, ये वेट बढ़ाने वाली चीजें हैं। बाकी खाने में आप दूध लीजिए, फुल क्रीम। अगर जल्दी वेट बढ़ाना है तो उड़द की दाल की खीर बना खाइए आप, उसमें नमक नहीं डालना, तो आपका वेट बढ़ेगा। तो ये खाने पीने का थोड़ा डाइट अच्छी करोगे तो वेट बढ़ेगा
0: जी। डॉक्टर साहब, अबू उबैदा है उत्तर प्रदेश से, आप कहते हैं कि इनको सर्वाइकल है, गर्दन और हाथ में दर्द रहता है, हाथ में कभी कभी झुंझुनाहट भी रहती है, उम्र इनकी 45 साल है, क्या करें?
1: देखिए, हमने अभी एक्सरसाइज बताई आपको सर्वाइकल के, उसको करिए, आपका झुंझुनाहट भी खत्म हो जाएगा। आप करके कर देखिए सही, और जो तरीका उसे अपना आप ठीक हो जाएंगे
0: जी। अगले नेहा है मुंबई से, आपने पहले भी सवाल किया और आपको धन्यवाद कह रही हैं, आपने जिनको एक्सरसाइज बताई उसके लिए, और साथ ही कह रही हैं कि
1: आपने एक्सरसाइज करी क्या?
0: हाँ, उसी के लिए शुक्रिया कह रही हैं आपको ये, और लिख रही हैं कि इनकी मदर जो है 79 इयर्स की है, उनको नी ज्वाइंट पेन रहता है, तो प्लीज उनके लिए कोई ट्रीटमेंट बताइए आयुर्वेदा में क्या हो सकता है।
1: नी ज्वाइंट्स के लिए पहली बात तो ये है कि अब इतनी उम्र है उनकी, तो भी खड़े होकर दूध पिए और बैठ के पानी पीना है, मतलब दूध के अलावा जो भी खाना पीना है बैठ के खाना है। ठंडी चीजें उनको अवॉइड करनी है, और थोड़ा सा उनको घुटने की मूवमेंट करनी है, एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज आप समझ सकती हैं, तो एक घुटना छाती से लगाइए, टांग के बीच में से हाथ निकाल के उसको वहीं रोकिए, और आगे लेग को ऊपर उठाइए जितनी उठती है, और फिर नीचे ले आइए। ये एक्सरसाइज धीरे धीरे करनी, झटके से नहीं करनी। ऐसा आप हर दो घंटे बाद में कर सकते हैं 10-10 बार, या अगर हेल्थ थोड़ा सा इंप्रूव कर ठीक है तो आप 35-35 बार दिन में 3 बार करिए। पर अगर आपको कमर में दर्द है तो ये एक्सरसाइज लेट के करनी है, अगर कमर में दर्द नहीं तो बैठ के कर सकते हो, आपको घुटने में आराम आएगा। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि घुटना जो है वेट बीरिंग ज्वाइंट है। दूसरा आप जो है अभी आपके कैल्शियम ले सकते हैं, अगर मोटी नहीं है, ज्यादा वजन ज्यादा नहीं थे, उनको अश्वगंधा दीजिए साथ में, तो आप ले सकते हैं, रिलीफ होगा। हड्डियां मजबूती के लिए लाक्षादी गूगल आता है वो ले सकते हैं। पेन के लिए हमारे पास जो है त्रिरोधसांग गूगल है, और कैशोर गूगल है, और बहुत सारी दवाइयां, और आप ले सकते हैं कोई भी।
0: डॉक्टर साहब, सुधीर सिंह जी हैं कुतुबगढ़ से, कहते हैं कि मैम बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, उनको जल्दी जल्दी बुलाया कीजिए, ये इन्होंने लिख के भेजा है। एक चीज हम और ले लेते हैं लास्ट में, ये जो उनकी क्वेरी है, कहते हैं मैम मेरा एक सवाल है, मेरी मदर की, इनकी मदर जो है उनकी एज 45 बता रहे हैं, उन्हें लोअर बैक में बहुत पेन होता है, उनकी लेफ्ट लेग में भी पेन रहता है, क्या करें?
1: देखिए, मुझे लगता है अगर आगे झुकने से उनका पेन बढ़ रहा है तो 99% डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये तो आप बताएंगे आप झुकने से बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। अगर मान लो झुकने से बढ़ रहा है तो आगे नहीं झुकना, पहली बात तो आगे झुकना ही नहीं है। दूसरा, जो सर्पासन होता है, सर्पासन वो ऐसे कर सकती हैं, उससे उनको रिलीफ हो सकता है। तो ये तो एक, या तो आप जांच कराइए उनकी, कंफर्म हो जाएगा भाई डिस्क की प्रॉब्लम है या वैसे। बाकी तेल है आयुर्वेद का जो तेल, ये ध्यान रखिए जहां पेन है वहां पर प्रेशर डाल के मालिश नहीं करनी, हल्के हाथ से तेल को रमाना है। कभी भी रीढ़ की हड्डी की मालिश नहीं करते, जो भी ज्वाइंट्स है उनके प्रेशर डाल के मालिश नहीं करनी चाहिए, लोग वहां प्रेशर डालते हैं और प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
0: ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है, जो हर आमो खास को, मुझे लगता है खासो आम को जो है ये मदद करेगी। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर बी एस डबास इस प्रोग्राम में रहे, जिन्होंने जो कंसल्टेंट है आयुर्वेदा की CGHS न्यू दिल्ली से, आपने हमें बताया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। तो इसी के साथ मैं तपस्या रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में आपसे लेती हूं इजाजत, इस वादे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। आप सुनते रहिए FM रेनबो इंडिया, नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में सभी के लिए संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने संबंधी विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में भाग ले रहे हैं। इसमें G7 सदस्य देश, सहभागी देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की आज शाम को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक होनी है। बैठक के दौरान परस्पर सहयोग को मजबूत करने संबंधी विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हो सकता है। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच फरवरी 2025 में वॉशिंगटन DC में मुलाकात हुई थी। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमरीका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। नेताओं ने इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में G7 नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल बढ़ाने और तस्करी रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को से संवाद करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ गया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
2: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्यभर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 34 ओवर में 2 विकेट पर 276 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन शतक लगाकर क्रीज पर मौजूद हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
0: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव। जी हाँ, जैसे जैसे हम समझदार होते जाते हैं वैसे वैसे हम सपने भी बड़े बड़े देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सपनों के साथ साथ जिम्मेदारियों का बोझ कई बार हमको ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देता है जहाँ हमारी नजरों के सामने दो ही विकल्प बचते हैं। पहला, हिम्मत के साथ उन परिस्थितियों का सामना करना, मुश्किलों को हराना, या फिर दूसरा, खुद हार कर अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेना। दोस्तों, आज की भागम भाग जिंदगी में ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए हर कोई आसान रास्ता तलाशता है अपनी जिंदगी में, और इसी वजह से आजकल आत्महत्या करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, आज के दिशा प्रोग्राम में इसी विषय पर आपसे बात करेंगी लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

0: सपना टूटा नहीं कि हार मान लेता है इंसान, लेकिन सूरज जैसे कई ऐसे भी लोग होते हैं जो हर परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं, मुश्किलों के तूफान से भी अपने आप को निकाल कर आगे बढ़ना जानते हैं।
1: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। 2013 में दोस्तों मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज आत्माराम में इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स कर रहा था। उसी दौरान दोस्तों क्या हुआ कि एक महिला मित्र के साथ मेरा लव अफेयर स्टार्ट हो गया था। तो इस लव अफेयर में लगभग 6-8 महीने बीते थे। उसके बाद उनके माता पिता को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने मेरे माता पिता से बात करने के बजाय कानून का सहारा लिया, जिसमें उन्होंने ये लिखवाया कि मैंने उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया है, जिसके चलते मेरे ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए मेरे को अरेस्ट किया और मेरे को तिहाड़ जेल भेज दिया। इसके बाद दोस्तों लगभग 9-10 महीने मैंने तिहाड़ जेल में अंदर बिताए, जो कि बहुत ही कठिन थे, जिसको बयां करना भी शायद मेरे लिए अभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। 9-10 महीने बिताने के बाद मेरे माता पिता, मेरा एक बड़ा भाई, उनकी कड़ी मेहनत के बाद मैं बाहर आया। छूट के बाहर आया तो देखा दोस्तों पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा था, ना वो दोस्त रहे, ना वो पड़ोसी, ना वो कॉलेज की लाइफ, ना वो आर्थिक स्थिति रही, सब कुछ जैसे मानो तहस नहस हो गया था। इसके बाद दोस्तों मैंने पढ़ाई पे ब्रेक लगा के नौकरी की तरफ अपना रुख किया और उसके बाद मैंने कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी करी। और ये कहानी आपको आज बताने का दोस्तों मकसद मेरा ये है क्योंकि वो 2013 में जो लीगल केस मेरे ऊपर डला था रेप का, जनवरी 2026 में हाई कोर्ट ने उसमें मेरे को बाइज्जत बरी किया है। हालांकि ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन क्या सच में खुशी की बात है? क्योंकि एक इंसान के 18 से 32 साल जो कि उसका गोल्डन पीरियड माना जाता है, उस गोल्डन पीरियड को मैंने कोर्ट कचहरी के धक्के खाते हुए बिता दिए। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं, मेरी माँ ने मेरे को हमेशा सिखाया, जिंदगी में चाहे जो हो जाए कभी हार नहीं माननी, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, ईश्वर पे भरोसा रखना है और सब ठीक हो जाएगा। आज दोस्तों मुझे अपनी माँ की ये बात बिल्कुल सत्य लगती है, क्योंकि मेरा केस मुकदमा सब खत्म हो चुके हैं, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है, यार दोस्त फिर से एक साथ हो गए हैं। मुझे अपनी कहानी बताने के पीछे का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना था कि जीवन में सही समय गलत समय आता जाता रहेगा, लेकिन हमें कभी भी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। मैंने कभी भी दोस्तों इस मुश्किल समय में भी अपने दिमाग में कोई गलत ख्याल नहीं आने दिया, जिसमें कि मैं आत्महत्या के बारे में सोचूं, सुसाइड के बारे में सोचूं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि मेरे मन में ये चीज क्लियर थी बिल्कुल कि आज अगर दिन बुरे हैं तो कल अच्छे जरूर होंगे, उस परमात्मा पे, उस ईश्वर पे भरोसा रखिए। तो इसी जज्बे को मैं चाहूंगा दोस्तों कि आपके अंदर भी ये जज्बा रहे कि परिस्थितियां कैसी भी हों, दिन अच्छे हों बुरे हों, लेकिन उस परमात्मा पे भरोसा रखिए और अपनी जिंदगी को आनंदमय जिए। धन्यवाद।

0: जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। और आइए अब जानते हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ से कि कैसे हम परेशान और निराश व्यक्तियों के दिल और दिमाग से आत्महत्या करने जैसी फीलिंग्स को हटा सकते हैं और उनको आत्महत्या करने से रोक सकते हैं।
1: आजकल आए दिन समाचार में हम सुन रहे हैं कि आत्महत्या बहुत बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कहा जा रहा है, अर्थात सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। बताया जा रहा है कि पिछले दशक में जो दिहाड़ी करने वाले लोग हैं उनके आत्महत्या करने की संख्या 31% हो गई है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो युवक हों, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों। ऐसा क्या हो गया है कि लोग आत्महत्या पर उतारू हो गए हैं? परेशानियां पहले भी थीं, परेशानियां आज भी हैं, कल भी रहेंगी, लेकिन आत्महत्या क्यों? आजकल लोगों की मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा नाजुक है, इतने ज्यादा लोग अकेले हैं, कोई बात करने वाला नहीं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं। पहले अगर कुछ परेशानी होती थी तो घर की महिलाएं एक दूसरे के साथ अपने दुख बांट लेती थी, बुजुर्ग एक दूसरे के साथ बांट लेते थे, अधिकतर बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ ही रहते थे, जवान लोग बातचीत कर लेते थे, लेकिन आजकल किसी के पास समय नहीं है किसी की सुनने का। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जब उनको लगता है कि उनकी कोई परवाह नहीं कर रहा, कोई उनकी जिंदगी में किसी भी तरीके की रुचि नहीं रखता, सब उन्हें भूल चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो हमें बहुत सराहाते हैं, हमको कहते हैं कि आप अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, हमको कहते हैं कि वो हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो प्रिय श्रोता, हमारी आपसे यही आग्रह है कि आप हमारे इन कार्यक्रमों को और भी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो प्रोत्साहन आप हमारे कार्यक्रमों से पाते हैं वही प्रोत्साहन और लोगों को भी मिलने पाए। किस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज के समय में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ये फासला बढ़ता जा रहा है, और गरीब या तो फिर गलत राह पकड़ लेता है और जब वहाँ पर भी कुछ हासिल नहीं होता तो फिर आत्महत्या ही करता है। किस तरीके से हम जब ऐसे संदर्भ में रह रहे हैं तो हम परिस्थिति को बदल सकते हैं, किसी की मुस्कुराहट का कारण बन सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं। एक बुजुर्ग कपल है जो मेरी सोसाइटी में रहते हैं, 80 वर्ष तक के होंगे, और वो गेट के पास बैठ जाते हैं सुबह सुबह अपनी सैर करने के बाद, और जो भी आता जाता है उनको नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरीके से तेज रफ्तार से आज के दंपत्ति दौड़ रहे हैं। सुबह सुबह वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं, फिर वो अपनी नौकरी पर भागते हैं और फिर रात को ही घर लौटते हैं। उनको पता है कि जवानों को आज समय नहीं है, इसलिए वो स्वयं ही सोसाइटी गेट पर बैठ के 2 मीठे बोल बोल लेते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं और छोटे बच्चों को नमस्ते करना भी सिखाते हैं, बातचीत करना भी सिखाते हैं, मुस्कुरा के बोलचाल करना भी सिखाते हैं। हम क्या कर सकते हैं ताकि हम किसी के लब पर मुस्कुराहट ला सकें? क्या हमारे घर में कोई काम करने वाली आती है? क्या हम उससे पूछ सकते हैं, आज तुम कैसी हो, तुम्हारे घर बार में सब ठीक है? क्या हम किसी बच्चे की फीस दे सकते हैं? क्या हम किसी बेरोजगार की मदद कर सकते हैं उसकी नौकरी लगवाने में? क्या हम किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं? कई बुजुर्ग हैं जो खाली बैठे हैं, अपने समय में अफसर हुआ होते होंगे लेकिन अब खाली हैं, तो क्या वो गरीब बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं? क्या वो किसी बच्चे को करियर गाइडेंस दे सकते हैं? क्या वो अलग अलग तरीकों से किसी की सहायता कर सकते हैं? जी हाँ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी बहुत बड़े अफसर ने कहा है, आप जो भी कर सकते हो, जितना भी आपके पास है, थोड़ा ही हो, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ हम सब कर सकते हैं। किसी को गर्मी के मौसम में पानी पिलाना, किसी थके मांदे से पूछ लेना, आज आपका दिन कैसा है। हो सकता है जब हम किसी से प्रेम से बात कर रहे हों, या किसी को देखकर मुस्कुरा रहे हों, या किसी गरीब बच्चे को देखकर उसके सर पर हाथ फेर रहे हों, हो सकता है वो आत्महत्या करने का ख्याल छोड़ दे, हो सकता है वो अपने मन की बात हमसे कह ले। अपने लिए तो सभी जीते हैं प्रिय श्रोता, दूसरों के लिए जी के देखिए, बहुत आनंद आएगा।
0: जी हाँ, अपने लिए जिए तो क्या जिए, क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही जीना कहलाता है। और दोस्तों, आत्महत्या जैसी घटनाओं को भी कम किया जा सकता है अगर हम अपने बारे में न सोचकर अपने आसपास रहने वाले उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो परेशान है, निराश है। उस व्यक्ति के साथ बैठकर दो मीठे बोल बोलिए और उसको मात्र ये एहसास दिला दीजिए कि आप उसके साथ हैं और उसके हितेशी भी। यकीन मानिए, वो आपकी इन्हीं बातों को याद करके उन सभी नकारात्मक बातों को अपने दिल और दिमाग से निकाल देगा जो उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रही थी।

0: याद रखिए, आपका छोटा सा प्रयास बचा सकता है किसी की जिंदगी और उसके चेहरे पर ला सकता है मुस्कान। तो दोस्तों, मुस्कुराइए और दूसरों के मुस्कुराने का भी बनिए सबब। और हाँ, अगर आप हमारे काउंसलर से आज के विषय पर बात करना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर से फोन या मैसेज के द्वारा बात कर सकते हैं। नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। और हाँ, अगर आप हमारे साथ यानी दिशा फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं और जिंदगियों को सही दिशा दिखाकर उनको संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करके या हमारे काउंसलर से इसी नंबर पर बात कर सकते हैं। 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा।

0: आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए बुधवार की शाम का वो खास प्रोग्राम जो आता है आप तक सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी हां, नाम है इसका अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग, और वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन रहता है अल्फा जेन का, और अल्फा जेन जो कि जुड़ा है हमारे यूथ के साथ में। तो खासतौर पर बुधवार के दिन हम आपको ले जाते हैं यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन कॉलेजेस का माहौल जो है ना बहुत ही होता है वाइब्रेंट, और बदलते हुए मौसम के साथ हर दिन के साथ बदलता भी रहता है, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत ही खास क्वालिटी होती है इस जगह की, और ये वही क्वालिटी है जिसको शायद डिफाइन नहीं किया जा सके, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उस जोश से भरी हुई, उस समय से भरी हुई जब इंसान बहुत होपफुल होता है, जब उसके आंखों में बहुत से सपने होते हैं, जब उसे हर सपना जो है सच होता हुआ नजर आता है, ये वक्त ही कुछ और होता है, ये समय ही कुछ और होता है। और हमारी यूनिवर्सिटी के जो गलियारे हैं ना, वहां पर जो ये सपने पलते हैं आंखों में, इनके होने की उम्मीदों के साथ ये जो कदम वहां पर चलते हैं, वहां पर उन गलियारों में ये स्टूडेंट्स हमारे जो हैं, इनके पास में होता है वो खजाना जिसे वो दुनिया पे लुटा देना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास ना केवल एकेडमिक्स, ना केवल टैलेंट, बल्कि उसके साथ साथ वो जोश भी होता है जो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। और यही सब बातें हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, नाम है इसका अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल। और आज हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची कहां, वो पहुंची शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज, और वहां पे की उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बातचीत। आइए चलिए वहां की वाइब्रेंसी को आप तक पहुंचाते हैं, सुनते हैं माला नेगी ने वहां पर, यानी कि भगत सिंह कॉलेज जो इवनिंग कॉलेज है, वहां पर उन्होंने क्या बातचीत की।
2: हाय, तो अभी मैं हूँ शहीद भगत सिंह कॉलेज के फ्रंट लॉन में, और मेरे साथ है यहाँ पर भगत सिंह कॉलेज के स्टूडेंट्स। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि अब बहुत जल्द CUET का रिजल्ट आने वाला है, और ऐसे में इनके जूनियर्स जो अब कॉलेजेस में आएंगे, उन्हें इनकी बहुत मदद की जरूरत है। इनसे जानेंगे कि CUET का रिजल्ट आने के बाद किस तरह से स्टूडेंट्स अपने कोर्सेज और कॉलेज का चुनाव करें ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके।
3: मैम, मेरा नाम वंशिका सिंह है और मैं शहीद भगत सिंह सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ। इम्पोर्टेंट एडवाइस तो ये रहेगी कि अभी जैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का दौर चल रहा है, तो उसको बनाने के लिए आपको अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए ऑनलाइन भी, प्लस अपने सीनियर्स और टीचर्स से हर रोज एडवाइस लेते रहना चाहिए, और रिगार्डलेस ऑफ योर कोर्स आपको अपनी प्रेफरेंस शीट टॉप टू बॉटम बनानी चाहिए, और इससे आपको अपना प्रेफर्ड ड्रीम कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे।
4: ओके, माय नेम इज़ आकांक्षा। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने लाइक आई एम अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन, सो लाइक आई हैव नो कनेक्शन विद माय सीनियर्स एज वेल, सो लाइक मुझे कुछ नहीं पता था, इट वॉज जस्ट न्यू फॉर मी। देन मैंने अपना फॉर्म वगैरह भरा, देन मेरे फ्रेंड्स ने भी भरा। आफ्टर फिलिंग द फॉर्म व्हेन द डेट इज एक्सटेंडेड, आई गेट टू नो दैट मैंने सब्जेक्ट बहुत कम सिलेक्ट करे थे, जिसकी वजह से मेरा स्कोप जो था कोर्स का वो कम हो गया था, तो मुझे ऑनर्स कोर्स नहीं मिल पाया, इस वजह से मुझे BA प्रोग्राम करना पड़ा। अदरवाइज माय प्रेफरेंस वाज BA ऑनर्स।
2: ऑनर्स और प्रोग्राम में क्या फर्क हो गया?
4: लाइक इसमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका डिफरेंस होता है, तो वो मुझे प्रॉब्लम आई थी उस चीज में, तो मैंने क्या करा था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, सीनियर से कनेक्शन भी नहीं था, तो जब एक आपके पास ऑप्शन होता है, या तो फॉर्म आ रहे हैं तभी आप अपना बेटर वो कर सके, फॉर्म फिल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट चूज कर सके, ताकि इन फ्यूचर आपको कोर्स से रिलेटेड या आपके ड्रीम कॉलेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे नहीं थी नॉलेज, तो फिर मैंने साइबर कैफे जहाँ से भी फॉर्म भरवाया था, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि सारे बच्चे जो है वो इतने इतने कोर्सेज फिल कर रहे हैं, आपको भी इतने करना चाहिए, अदरवाइज आपको कोर्सेज में प्रेफरेंस नहीं मिल पाएगी, ज़्यादा स्कोप नहीं मिल पाएगा। और माई लास्ट सजेशन वुड बी अपने कोर्सेज की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा रखें, क्योंकि ये स्कोप आपका बढ़ा देता है कोर्सेज में भी एंड कॉलेजेस में भी।
2: ओके,
4: दैट्स व्हाट आई वांट।
2: ओके, ब्रिलियंट ब्रिलियंट।
5: सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू।

0: फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. सो मैं पवित्र अग्रवाल हूँ, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, इको ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ SBSC से. SBSC मेरी प्रेफर्ड कॉलेज था, तो मेरे को मिला है, मेरे को अपने चॉइस से मिला है. प्लस माय कोर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स, वो भी मेरे को अपने चॉइस से मिला है. सो वही मैं आज स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कोर्स को प्रेफर कीजिए रादर देन कॉलेज रैंकिंग. अगर आपका कोर्स सिलेक्शन प्लस आपका कॉलेज नेम है, देन दैट विल डेफिनेटली हेल्प टू बूस्ट योर करियर.
1: ओके.
0: प्लस जब आप कॉलेज आ जाएं तो आप अपने सीनियर्स से कनेक्शन जरूर बनाएं
1: आने के बाद. ओके.
0: और आने के पहले भी गाइडेंस तो लेते रहे, बट आने के बाद जो न्यू कनेक्शंस होते हैं सीनियर्स के साथ वो जरूर बनाएं. तो वो बहुत हेल्प करते हैं आपको अपने फ्यूचर गाइड के लिए, चाहे आपको वो मास्टर्स करना हो, चाहे आपको उसके बाद जॉब परस्यू करना हो या जो भी करना हो, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे कैसे क्या करें. तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा कि आगे आपके करियर को बूस्ट कैसे किया जाए.
1: मेरा सवाल आपसे, ये कोर्स सिलेक्ट करने वाले स्टूडेंट्स जो है वो बहुत कम है, इसलिए जनरली उनको जो वो प्रेफरेंस देते हैं वो कॉलेज मिल जाते हैं, ऐसा होता है क्या?
0: डिपेंड करता है. इको ऑनर्स के स्टूडेंट्स इसीलिए कम होते हैं क्योंकि उनको मैथ्स, स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक जैसे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं.
1: हाँ.
0: जो कि थर्ड ईयर तक एप्लीकेबल होते हैं. तो उससे बच्चे डर जाते हैं.
1: हाँ.
0: कि मेरे से इतना प्रेशर हैंडल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनरली ठीक है, आप बीकॉम ऑनर्स बाकी जितने भी कोर्सेज हैं इतना प्रेशर कंपैरेटिवली नहीं होता, वो थोड़ी सिंपल लाइफ जीते हैं.
1: तो इसका मतलब ये फैक्ट है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए स्टूडेंट्स कम ऑप्ट करते हैं.
0: हाँ, बट जिनको अपना करियर बूस्ट करना है, उनका इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, तो वो डेफिनेटली परस्यू करे, वो आगे बढ़ेंगे.
2: तो माय नेम इज अविनाश. मैंने भी उस टाइम पे रिसर्च की नहीं थी, लाइक मैंने 31 कॉलेजेस भरे थे जिसमें से मुझे 30 कॉलेजेस अलॉट हुए थे रेदर देन DU 31 कॉलेज था. और जो मैंने कॉलेजेस भरे थे, मेरे से मिस्टेक क्या हुई थी कि अगर आप या फिर कोई और पर्सन भरता है तो मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा कि आप कॉलेज के थ्रू जाओ, मतलब कॉलेज की रैंकिंग के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज़ करो. लाइक दैट अगर आपको SRCC चाहिए, SRCC में आपको BCOM की रैंकिंग बहुत हाई मिलती है रदर देन BA इकोनॉमिक्स की रैंकिंग उससे थोड़ी कम मिलती है. अगर आपको वो कॉलेज मिलता है तो उस कॉलेज के थ्रू आपको प्लेसमेंट सेम ही मिलेगी, क्योंकि BA इकोनॉमिक्स के भी जो स्टूडेंट है या फिर BA के कोई भी स्टूडेंट है वो कंटेंट राइटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, इन सब के लिए प्लेसमेंट एलिजिबल होते हैं. उनको अकाउंट्स वगैरह की नॉलेज की जरूरत नहीं होती है वहाँ पे. तो अगर आपको बढ़िया कॉलेज मिल रहा है, लाइक नॉर्थ कैंपस कोई मिल रहा है, आपका कोर्स उतना अच्छा नहीं है, बी कॉमर्स नहीं है, BA इकोनॉमिक्स नहीं है या फिर कोई और हाई रैंकिंग कोर्स नहीं है, तो भी आपको वो कॉलेज बेनिफिट देगा ही देगा. तो अगर आप सेलेक्शन ही देख रहे हो और आपको अगर कॉलेज माइंड में है कि हाँ ये कॉलेज है, क्योंकि कॉलेज के रैंकिंग से डिपेंड नहीं करता, कॉलेज का क्राउड भी डिपेंड करता है. अगर आप बढ़िया क्राउड में रह रहे हो, लाइक आपकी वोकेबिलिटी भी स्ट्रांग होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रांग होगी, और अगर आप आगे जॉब करना चाहते हो, जो कि हर पर्सन करना ही चाहता है बिकॉज अर्निंग सबके लिए मैंडेटरी होती है, तो वो बेनिफिट देता है कॉलेज.
1: ये जो प्रेफरेंस लिस्ट में लोग 100-100 कॉलेजेस के नाम भर देते हैं, वो भरने चाहिए, उससे वाकई कुछ बेनिफिट होता है?
2: अगर आपको लाइक कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपकी रैंकिंग उतनी अच्छी है, नंबर्स उतने अच्छे हैं, तो आप भर सकते हो. बट उसमें भी एक ट्रिक होती है कि आप टॉप कॉलेजेस ऊपर रखो अगर आप कॉलेज के बेसिस पे जा रहे हो, या फिर अगर आपके माइंड में है कि नहीं मुझे बीकॉम ऑनर्स ही करना है, तो आप उस कोर्स के अकॉर्डिंग कॉलेज रखो. लाइक SRCC रख दिया, फिर हिंदू रख दिया, फिर हंसराज रख दिया. और अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे SRCC चाहिए, तो SRCC बीकॉम ऑनर्स, फिर SRCC BA इकोनॉमिक, फिर SRCC जो दूसरा कोर्स है, ताकि आपको वो किसी भी हालत में वो कॉलेज अलॉट हो जाए. कॉलेज अलॉट होगा तो आप उस क्राउड में रहोगे.
1: थैंक यू सो मच आज की इस इंटरेक्शन के लिए.
3: वाकई में ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, और CUET जब देना ही है तो अपने बारे में, अपनी इस ऑप्शंस के बारे में और उसको किस तरह से चुनना चाहिए, ये सब चीजें तो डेफिनेटली काम की होती ही हैं. भाई एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, एडमिशन सीजन जो है वो शुरू हो चुका है, ऐसे में CUET जो है बहुत से लोगों की नींद उड़ाए हुए हैं. मुझे लगता है कि ये इतनी जो बहुत ही ज्यादा काम की बात अभी आपने सुनी है, ये आपके काम जरूर आएगी अगर आप भी अपेयर हो रहे हैं इस साल CUET के लिए. फिलहाल मैं आपको याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं अल्फा जन कैंपस कॉलिंग का ये स्पेशल एडिशन, जिसे आप सुनते हैं हर बुधवार शाम को 4-5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे. और आज माई सहयोगी पहुंची हैं शहीद भगत सिंह कॉलेज, और वहां के स्टूडेंट से, वहां के टीचर से, वहां के प्रिंसिपल से, इन सबसे की इन्होंने मुलाकात, और जितने भी है ना काम की बात वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे हमारे इस कार्यक्रम के जरिए. आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो.

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक आकाशवाणी रेनबो।
1: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
2: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
1: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
2: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
1: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
8: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
7: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
8: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
7: और विनर्स को क्या मिलेगा?
8: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
7: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
6: www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
9: म्यूजिकली योर्स 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और मैं आपके लिए लेकर आई हूं प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग। हर बुधवार शाम को जब हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्राउंड्स में, वहां के कॉलेजेस में, और हमारी सहयोगी माला नेगी अब की बार पहुंची शहीद भगत सिंह कॉलेज और वहां के बहुत सारे स्टूडेंट्स से की उन्होंने बातचीत। बहुत सारी काम की बात लेकर आई हैं अब की बार वो। वेल, वहां पे मजे तो होते ही हैं, मस्ती होती है, लेकिन ये जो वक्त होता है ना इस समय पे नए एडमिशंस का, ऐसे में बहुत से सवाल भी होते हैं जिनके जवाब जो है ना वो मिलने चाहिए, और कुछ जवाब जो है ना उन्होंने खोजे भी हैं। आइए आपको सुनवाते हैं।
10: हाय, तो अभी मैं हूँ शहीद भगत सिंह कॉलेज के कैंटीन के पास, और हमारे साथ है कॉलेज के कुछ बहुत ही ब्रिलियंट और सीनियर स्टूडेंट्स। तो आइए इनसे जानते हैं कि जब ये लोग कॉलेज पास करके बाहर निकलेंगे, या कॉलेज में भी कई तरह के फियर्स होते हैं इंटरेक्शन वाले, तो आइए कॉलेज स्टूडेंट से जानते हैं कि इनके अंदर इंटरेक्शन से रिलेटेड किस तरह का डर है और उस डर को दूर करने के लिए लोग कैसे काम करते हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम यू।
11: सो मैं प्रतीक अग्रवाल हूँ, मैं थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस से अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ। सो जब कॉलेज में स्टार्टिंग में आते हैं तो कुछ टाइप के फेयर रहते हैं कि हम लोगों को अप्रोच कैसे कर पाएंगे, देन हम अपनी बात कन्वे कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड इवन कॉलेज से निकलने के बाद भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी हमारे पास, एंड चाहे वो इंटर्नशिप्स हो, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोगों को अप्रोच करते हैं। एंड ये चीज हमें भी सीखनी चाहिए कि हद से हद क्या होगा, गलत ही होगा। तो एंड हमेशा उस गलत को ठीक करा जा सकता है। सो एक वो चीज़ की हम लोग को अप्रोच कर पाएं, हम अपनी बात अच्छे से कन्वे कर पाएं, एंड हम कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में अगर कोई भी चीज़ करनी है, चाहे इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, चाहे लोगों से बात कर रहे हैं, इवन अगर ये वाला इंटरेक्शन भी हम लोग कर रहे हैं। सो अपनी बात कन्वे करना, इन कॉन्फिडेंस से चीज़ों को हैंडल करना, आई थिंक ये चीज़ शायद हमें सीखनी है, ये चीज़ हमें आगे हेल्प करेगी।
10: ओके, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको ये पता चला कि रेडियो से लोग आने वाले हैं और आपको उनसे इंटरेक्ट करना है, तो किस तरह का डर? सबसे पहले मन में ये ख्याल आया, नहीं मुझे नहीं करना, मैं नहीं आ रही, ऐसा कुछ हुआ था?
12: हाँ ऐसे ही हुआ था कि सॉरी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चितवन हूँ एंड आई एम पर्सुइंग इकोनॉमिक्स एंड आई हैव गिवन माय सेकंड ईयर एग्जाम्स. तो जब सर ने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे रेडियो के लिए है, तो सबसे पहले मुझे लगा कि पता नहीं क्या पूछेंगे एंड वुड आई बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. तो मुझे सबसे पहले यही लगी वाली चीज.
10: लेकिन कई बार डर के मारे ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे. ऐसा डर आपको भी लगता है और इस वजह से अपॉर्चुनिटीज आपकी भी छूटती हैं?
12: ऐसा डर लगता है एंड आगे भी लगता रहेगा, बट मेरे में अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि लाइक इवन हियर आल्सो आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू. तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगी, बट आई नो हाउ टू मेक बेस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी. तो वो आपको धीरे धीरे बिल्डअप करना पड़ेगा, वो आपको कॉन्फिडेंस होगा जब आप लोगों से इंटरेक्शन करोगे, अपने फियर्स को ओवरकम करोगे, तभी आएगा. इवन लाइक क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि हम यहाँ पे बिलोंग नहीं करते हैं, कि हम क्यों एंड ऐसे. तो जब तक आप में खुद में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक ये चीज ओवरकम नहीं कर पाओगे. एंड
10: आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है.
13: थैंक यू सो मच मैम.
10: आपका नाम बताओ खूबसूरत सा.
13: मेरा नाम कृति है और मैं बीए इंग्लिश ऑनर्स से हूँ और सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया है, थर्ड ईयर में जाएंगे.
10: अच्छा कृति, कई बार क्या होता है ना कि हमारी स्माइल बहुत खूबसूरत है तो कई बार सामने वाला स्माइल देख के इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि

0: बड़ी खूबसूरत लड़कियां होती हैं, वो बड़ी जल्दी डर भी जाती हैं और डर के मारे रो जाती हैं। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसा, मतलब किसी के साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है या इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने गई और पहला ही सवाल कि लगा क्या होगा पता नहीं और डर के मारे रोना छूट गया, कभी हुआ है किसी भी ऐसे ओकेजन पे आपके साथ?
1: नो मैम, सचमुच मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ तो मैं इंटरेक्ट करने में वैसे जल्दी डरती नहीं हूँ, लेकिन जब पहली बार इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देना था तो डर था, लेकिन उसके लिए हमारे भैया है उन्होंने बताया हुआ था कि जब किसी के सामने बोलो तो ये सोचो कि आप खुद से बात कर रहे हो, सामने वाले को कुछ नहीं आता।
0: अच्छा,
1: तो क्या बात, सोच के बात करो और जो मन में रहे कह देना। तो बस वही किया और हाँ, पहला इंटरव्यू अच्छा गया, चीजें सही हुई, तो तब से कॉन्फिडेंस आ गया है कि इंटरव्यू में भी नहीं डरती, बाकी बात करने में डर नहीं लगता था।
0: अच्छा, तो कभी कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में भी तब्दील हुआ है? बिकॉज देयर इज अ वेरी माइनर लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस।
1: हाँ, होता है, क्योंकि मैं एक्चुअली वीडियोस खुद के भी रिकॉर्ड करती हूँ, तो जब मेरा ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है तो मैं अपने वीडियो में पता चल जाता है कि यहाँ ज्यादा हो गया है, तो अब थोड़ा सा डाउन जाना है, ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होना है, तो वो चीजें खुद से कंट्रोल कर लेती हूँ देख के। तो यही सबसे बेस्ट तरीका भी है, अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है और अगर बिल्डअप करना है तो खुद के वीडियोस रिकॉर्ड करो, आपको खुद ही समझ में आएगा कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ आप सही बोल ले रहे हो, कहाँ आपकी मिस्टेक्स हैं।
0: जेन ज़ी होने का कितना फायदा या नुकसान होता है आपको इंटर्नशिप के लिए जब जाते हो तो?
2: मैं अनन्य शर्मा फ्रॉम BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, अभी मेरा सेकंड ईयर खत्म हुआ है और मैं अब थर्ड ईयर स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जेन ज़ी होने के फायदे बहुत होते हैं कि हमें बहुत से सॉफ्टवेयर्स और हम सब में बहुत ज्यादा टेक सेवी, जैसे आजकल लोग कहते हैं हम AI का यूज बहुत जल्दी कर लेते हैं। बट जेन ज़ी होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि इनफॉर्मल हो जाता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम दूसरे को हम ट्रीट करते हैं कि वो हमारा बड़ी ही है या हमारे जैसे ही है इंटरव्यू में, और हम थोड़ा मे बी इनफॉर्मल हो जाते हैं, एंड जो HR होता है मे बी वो प्रोफेशनलिज्म उस टाइम पे देख रहा हो तो वो हमारे तरफ से मिसकन्वे हो सकता है, जबकि हम चाहते नहीं है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जैसा है, हम रोज वैसे ही रहते हैं, तो वो हमारी एक इनबिल्ट इनेट क्वालिटी हो चुकी है आजकल की हम सबको वैसे ही ट्रीट करते हैं। बट जेन ज़ी होने के बहुत से फायदे भी है कि हाँ, हम जल्दी इमोशंस के कैप्चर कर लेते हैं, हम बेटर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है हमें दूसरों की, सोशल अवेयरनेस ज्यादा अच्छी है हमारी दूसरों की, हम स्टैंड्स लेना प्रेफर करते हैं, तो कंपैरेटिवली अभी हम वर्कप्लेस में डाइवर्सिटी ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, तो जेन ज़ी होने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, बट वो तो आप वहाँ पे जाके कैसे बैलेंस आउट करते हो वो एट द मोस्ट आपके ऊपर ही डिपेंड करता है।
0: ओके, आई होप आज की इस कॉन्वर्सेशन के जरिए बहुत सारे यूथ को एक आइडिया मिला होगा, कुछ टिप्स मिले होंगे कि इंटरेक्शन से रिलेटेड फियर अगर आपके अंदर भी है तो आपको किस तरह से उसे फेस करना है और कैसे सोसाइटी में स्टैंड आउट करके दिखाना है। थैंक यू सो मच। हाय, तो अभी मैं हूँ भगत सिंह कॉलेज में और मेरे साथ हैं कॉलेज की BCOM ऑनर्स की स्टूडेंट्स। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि BCOM ऑनर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स है, क्या इसमें इंटीग्रेटेड कोर्सेज की जरूरत है? क्या ऑलरेडी इंटीग्रेटेड कोर्सेज इसमें है, और अगर नहीं है तो इनकी जरूरत क्या है?
3: माय नेम इज वंशिका एंड मैं अभी शहीद भगत सिंह कॉलेज से BCOM ऑनर्स कर, अभी तक DU कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज प्रोवाइड नहीं कराता है। मेरे हिसाब से अगर DU कभी अपने करिकुलम में इंटीग्रेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करना चालू कर देता है तो इससे बच्चों पर वर्कलोड इंक्रीज हो सकता है, एग्जाम प्रेशर बढ़ सकता है, बच्चे ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस रहते हैं, अगर वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी ऐड कर देता है, इससे जो बच्चे ऑलरेडी प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं उनके लिए वो बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चों का टाइम मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इंटर्नशिप्स एंड ऑल के लिए उनके पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल देखा जाए तो एट दी एंड बच्चों की स्किल्स मैटर करती है, ना कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपको एक सक्सेसफुल करियर बनाना है तो।
4: ओके, हाय, आई एम महिमा एंड मैं BCOM ऑनर्स कर रही हूँ शहीद भगत सिंह कॉलेज से। व्हाट आई रियली थिंक इज ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज की वैल्यू एक तरह से डिसाइड नहीं हो सकती, हर स्टूडेंट का एक अलग करियर गोल होता है, एक अलग लर्निंग स्टाइल होता है और वो उसी हिसाब से अपने चॉइस सेट करता है। हो सकता है किसी एक बंदे को एक बार में एक ही चीज़ पे फोकस करना हो तो वो पहले ग्रेजुएशन करेगा और फिर प्रोफेशनल कोर्स करेगा, बिकॉज हम एक बार में नहीं डिसाइड कर सकते कि एक चॉइस सबके लिए कैसे बेस्ट हो सकती है।
0: कई बार ऐसा होता है जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि ओके, आपने ऑनर्स कोर्स किया, दैट्स ऑल राइट, लेकिन क्या आपने ये भी किया है, क्या आपने ये भी किया है, तो आपने कभी ऐसा देखा है अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स में या

0: करें, फिर उसके बाद अगर आप 4-5 साल कोई और कोर्स करें प्रोफेशनल, तो वो बहुत लंबा टाइम हो जाता है साथ में करने से. सो अगर DU साथ में सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोवाइड करे, सो आप विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप ज्यादा क्वालिफिकेशन अचीव कर सकते हैं और आपके लिए जॉब में अप्लाई करना भी बेटर हो जाएगा. आपके पास काफी सारी चीजें आपके पोर्टफोलियो में होंगी जो आप अपने पोर्टफोलियो में शो कर सकते हैं.
1: ओके, ऑलराइट.
2: आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंपस प्लेसमेंट भी होता है, इस बात का दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कितना फायदा होता है, स्पेशली अगर हम आपके कोर्स के बारे में बात करें, बीकॉम ऑनर्स के बारे में. तो जब कैंपस प्लेसमेंट होता है, बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज को उतना तवज्जो नहीं देती है और इस बात को ज्यादा तवज्जो देती है कि DU के स्टूडेंट्स के लिए वो गए हैं वहां पर. क्या होता है एग्जैक्टली, इंटीग्रेटेड कोर्सेज तभी भी मांगे जाते हैं या ये उनके लिए इतना ही काफी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यानी हमारे पास बेस्ट एम्प्लॉयज आएंगे?
3: मैम, सबसे पहले मेरा नाम शिवम है और मैं बीकॉम थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ. मैम, अगर कैंपस प्लेसमेंट की बात करें तो मतलब DU के स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल. लेकिन आज भी मार्केट में जिस तरह से इंटीग्रेटेड या सर्टिफिकेट कोर्सेज का डिमांड है वो है, आज भी है. अगर आप CA करके जा रहे हैं तो आपके पैकेज थोड़े हाई रहेंगे बीकॉम ऑनर्स वालों से. तो वो एक चीज अभी भी फैक्टर काम करती है. लेकिन जब से NEP आई है, जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हुआ, वो सब बढ़ा दी गई है. लेकिन प्लानिंग में ही अभी बहुत सी चीजें, एक्सक्यूशन अभी तक बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है. बट बीकॉम ऑनर्स एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही है NEP के अंतर्गत.
2: थैंक यू सो मच.
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग. और अल्फाजन कैंपस कॉलिंग में आज हमारी सहयोगी माला नेगी कहाँ पहुंची, वो पहुंची भगत सिंह कॉलेज और वहां पर उन्होंने बहुत सारी काम की बात जो है ना आप सभी के लिए इकट्ठा करके जो है हमें भेजी है, जो मैं आप सभी को सुनवा रही हूं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए. भगत सिंह कॉलेज जो कि एस्टैब्लिश किया गया था 1967 में, यानी कि साल 2016-17 जो था ना, वो था इसका गोल्डन जुबली ईयर. और इनका जो मोटो है वो है राष्ट्र देवो भव, यानी कि नेशन को सबसे पहले रखते हैं, अपने देश को सबसे पहले रखते हैं. एंड ऑब्वियसली उसमें एकेडमिक्स भी है, उसमें एक कहना चाहिए, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ग्लोबल आउटलुक रखते हैं. 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग में मैं ले रही हूं एक छोटा सा ब्रेक, आती हूं वापस इस ब्रेक के बाद. और उसके बाद हम जानेंगे कि हमारी सहयोगी माला नेगी ने क्या बातचीत की कॉलेज के प्रिंसिपल से.
4: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक.
5: आकाशवाणी रेनबो.
6: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो.
7: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है.
6: क्या ये जांच उपलब्ध है?
8: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है. समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है.
9: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है.
8: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं. स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार.
9: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें.
10: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी.
11: हे, डिड यू नो, ओवर द पास्ट 12 इयर्स अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इंडियाज डिफेंस सेक्टर हैज विटनेस्ड अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन. फ्रॉम बूस्टिंग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग टू स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स, इंडिया इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डिफेंस विद कॉन्फिडेंस.
12: यू आर राइट. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
11: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
12: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
11: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
13: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
14: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
15: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी. ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा.
14: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी. बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर.
15: अधिक जानकारी

0: जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6।

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप और मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन। और आज हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची भगत सिंह कॉलेज। और एक बात मुझे यहां पर याद आई, सोचा आपसे शेयर करूं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या होता है? वो होता है नॉलेज। और आजकल की दुनिया की बात करें तो अपडेटेड नॉलेज होना ना बहुत जरूरी है। और अपडेटेड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से भरा है हमारा आज का ये प्रोग्राम जिसे आप सुन रहे हैं ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। तो चलिए अपनी नॉलेज में और अपनी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा और करते हैं और सुनते हैं कि भगत सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल से क्या बातचीत की माला नेगी ने।
1: नमस्कार, तो अभी मैं हूँ शहीद भगत सिंह कॉलेज में और मेरे साथ हैं कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अरुण कुमार अत्री। सर, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम।
2: नमस्कार जी, धन्यवाद।
1: बात करते हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज के बारे में। आज के जमाने में चीजें बहुत डिमांडिंग हो गई हैं। कोई भी बच्चा अगर नॉर्मल कोर्स करके बाहर निकलता है तो उससे उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटीग्रेटेड कोर्सेज, जैसे अगर हम बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं तो उसमें अगर हमें सीए अगर बच्चों को करना है तो उनको अलग से करना पड़ेगा, सीए में अलग से करना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज की कितनी डिमांड और कितने बेनिफिट्स आपको लगता है कि हैं स्टूडेंट्स के लिए?
2: देखिए, क्या है कि कंपटीशन का जमाना है
1: जी,
2: और स्टूडेंट्स भी आजकल क्या है कि दे ऑल्सो वॉन्ट के कम समय में ज्यादा हो जाए। लेकिन एक जो थोड़ा सा कंसर्न है वो ये है कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन को ना कई बार सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको लगता है ये तो ग्रेजुएशन डिग्री के लिए है, मैं कुछ और कर लेता हूँ साथ में।
1: अच्छा।
2: लेकिन वो भूल जाते हैं कि ग्रेजुएशन जो है ना वो एक फाउंडेशन है एक हायर एजुकेशन की यहाँ पर। तो अगर कोई सीए करना चाहता है, अगर किसी को लगता है कि मैं सीए में ही जाना चाहता हूँ मैं, तो वो फिर रेगुलर कोर्स ना करे।
1: ओके।
2: फिर वो एसओएल से कर ले बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स और फिर जो है सीए कर ले, क्योंकि दो रेगुलर कोर्सेज नहीं कर सकते आप, क्योंकि सीए की डिमांड है, आप आर्टिकलशिप भी करेंगे और चीजें भी करेंगे, तो वो आप दो रेगुलर उस पर नहीं कर पाते हैं। तो या तो मतलब एक एसओएल से कर लें और दूसरा सीए कर लें, या फिर वो प्रॉपरली पूरा डेडिकेटेडली ग्रेजुएशन करें रेगुलर और फिर बाद में वो ये देखें कि इस तरह का कोई भी कोर्स अगर उन्हें लेना है।
1: लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे डिमांड्स बहुत होती हैं, आप कहीं किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो हाँ आपने ऑनर्स कोर्स किया, दैट्स फाइन। क्या आपने ये भी किया है कि आपका इस चीज का भी सर्टिफिकेट है? तो अगर इस तरह के कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं जब जॉब्स के लिए जाते हैं तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है?
2: देखिए, ऐसा है जो रेगुलर, मैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर कोई बच्चा रेगुलर कोर्स करता है तो कैंपस प्लेसमेंट होती है, तो अपने आप ही कंपनीज आती हैं कैंपस में, उनको उठा लेती हैं और उनको जॉब ऑफर करती हैं, जो ये चीजें बाकी लोगों को नहीं मिल पाती हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं। तो फिर वो लोग, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहा है, जो ओपन स्कूल से कर रहा है, वो ये सब कोर्सेज कर ले, क्योंकि फिर उसका करियर अलग, ग्राफ अलग चलेगा। रेगुलर कोर्स करने का करियर ग्राफ आपका अलग है, तो आपको कहीं मतलब यू कैन नॉट हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। मतलब ऐसा नहीं है ना, क्योंकि जो बच्चा रेगुलर कोर्स करना चाहता है उसका एडमिशन लेके आप उसको भी नहीं लेने दे रहे हैं और फिर आप कॉलेज भी नहीं आ रहे हैं, तो ये चीजें ठीक नहीं है।
1: सर, सीयूईटी का रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सीयूईटी का एग्जाम दे दिया, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कॉलेज चुनना है, कोर्स चुनना है, कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं जानते हैं। कुछ टिप्स उनके लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अब कॉलेज जाना शुरू करेंगे या उनका एडमिशन प्रोसेस चालू होगा?
2: देखिए, पहली चीज तो ये कि स्टूडेंट्स प्रॉस्पेक्टस अच्छे से पढ़ लें दिल्ली यूनिवर्सिटी का। सीयूटी का पेपर एग्जाम आ गया, हो गया, रिजल्ट आ गया, अगर रिजल्ट आ जाता है तो वो सबसे पहले ये देख लें कि किस कॉलेज में उन्हें जाना है, किस कोर्स को उनको चुनना है, उसके हिसाब से लास्ट ईयर का उनका देख लें कि क्या कट ऑफ गई थी। बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एक एस्टिमेट मिल जाता है, तो वो एक आइडिया उनको लग जाएगा कि भाई मेरा इस उसमें आ रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जो लास्ट ईयर गया तो वही जाएगा, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स कि इतना एक पूरा सिस्टम है, इट्स ए ह्यूज सिस्टम, बट आई एम टेलिंग यू इट्स ए वंडरफुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम द दिल्ली यूनिवर्सिटी इज हैविंग। सीसैट पोर्टल है, तो उसमें आप रजिस्टर करते हैं, उसमें आप वो आपका सीसैट सीयूटी का स्कोर अपने आप उठाता है, आप अपना डालते हैं उसमें। तो जब आप अपनी ऑप्शंस भरते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे SR 730 मेरा स्कोर आया, मैं SRCC में ऑप्ट कर रहा हूँ, और लास्ट टाइम गया था मैं UR कैटेगरी में आया तो 780 गया या 785 गया या 790 गया, तो इतना बड़ा गैप हो जाता है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि थोड़ा सा रियलिस्टिक भर दें, क्योंकि एलोकेशन जो है उसमें आसानी हो सकती है आपको। दूसरा, किसी भी अफवाहों में ना आए कि कोई मैनेजमेंट कोटा होता है, कुछ अनफेयर हो सकता है, इसमें कुछ भी अनफेयर नहीं होता है, इट्स ए वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। बहुत सारे पेरेंट्स भी कि हमें बच्चे का अच्छा है कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, दे फॉल प्रे टू यू नो दीज एजेंट्स, और आजकल इतने सारे कुछ कोई इंस्टाग्राम पे कोई बोलता है हम एडमिशन करा देंगे, ये करा देंगे, तो उनमें उनको फंसना नहीं है।
1: और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि हम प्रिंसिपल कोटा या स्टाफ कोटा में बच्चे का एडमिशन करा देंगे, क्या वो कोई पॉसिबल?
2: नहीं, नहीं, कोई प्रिंसिपल कोटा नहीं होता है और मैं चाहूं तो किसी का ऐसे एडमिशन नहीं कर सकता हूं, इट हैज टू बी थ्रू सीसेस पोर्टल ओनली। जो वार्ड कोटा होता है, स्टाफ कोटा नहीं होता, वार्ड कोटा होता है, वो वार्ड के अपने बच्चे के लिए ही होता है, वो ऐसे नहीं होता है, उसमें भी मेरिट चलती है। तो इट इज नॉट लाइक किसी का भी हम उठा के डाल देंगे, इट्स देयर इज नो सच मैनेजमेंट कोटा एक्सेप्ट इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। तो जो बाकी कॉलेजेस हैं उनमें ऐसा कोई भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई भी इस तरह का मैनेजमेंट कोटा नहीं है। तो कोई फूल ना करे किसी पेरेंट्स को, किसी बच्चे को कि भाई हम आपका एडमिशन करा देंगे, आप ये किए, जो होगा सीयूईटी में जो आपका स्कोर आया उसी के बेसिस पे आप सीसेस पोर्टल जो आप अप्लाई करेंगे, जो आपके ऑप्शंस होंगे उसी के हिसाब से आपको कोर्स और कॉलेज एलोकेट होगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस इंटरेक्शन के लिए, बहुत सारी जरूरी जानकारियां आपने दी और इतनी इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल स्टूडेंट्स के लिए जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि सीयूईटी के रिजल्ट के बाद बच्चे यहां वहां ताकें और ढूंढें कि कहीं से उन्हें जानकारी मिले। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं बिल्कुल सही माध्यम से, इस माध्यम के साथ जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू।
0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे हमने पहुंचाई आपके पास आज बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन। अगर आप भी एक DU एस्पिरेंट हैं देन ऑब्वियसली ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। CUET दे रहे हैं तो हमारी तरफ से उसके लिए एडवांस में जो है बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी ऑल द बेस्ट या जो भी बेस्ट विशेज होती है ना वो सारी की सारी मैं आपको यहां पर दे रही हूं और साथ ही हमने दी आपको जानकारी। आज मेरे सहयोगी माला नेगी पहुंची भगत सिंह कॉलेज और वहां से उन्होंने आप तक पहुंचाई है ये सारी बातचीत। फिलहाल आज का समय था बस यहीं तक, आज का प्रोग्राम मैं बस यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। स्वाति को दीजिए इजाजत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती देने संबंधी तंत्रों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की जरूरत पर बल दिया। सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित इस सत्र में उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 भारतीय प्रतिभाओं और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत के विकास

0: गाथा के बारे में भी बताया। इसमें G7 सदस्य देश, सहभागी देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्ल्यू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत और फ्रांस ने पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एनेली हेनाम्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक प्रभावशाली वृद्धि है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना सिग्नलिंग अवसंरचना के आधुनिकीकरण और रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया।
2: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 46 ओवर में 6 विकेट पर 380 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Pajuwa, number one.

0: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে বিশাল শর্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्य सत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्ज के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्ल्यू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय, आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Naresh Magu. Prime Minister Narendra Modi today addressed a crucial working session themed promoting balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all at the ongoing G7 summit in Avion, France. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
2: In his address at the session, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. He also proposed connectivity projects linking Africa, Latin America and the Pacific Island countries. He also suggested the creation of international mobilization partnership for accelerating connectivity and trade, in which G7 capital, India's talent and global South's ownership could be combined. During the session, Mr. Modi also highlighted that tangible growth leads to inclusion and well-being of the people. And spoke about India's growth story underpinned by Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Ankit Kumar, Akashwani News, Avion, France.
3: The high-level session was attended by G7 member nations, partner countries and key representatives from the International Monetary Fund and the OECD. Mr. Modi also participated in a working lunch focused on ensuring safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. This meeting brought together G7 member countries, partner nations, and the CEOs of leading AI companies to discuss the future of digital innovation. Prime Minister Modi and German Chancellor Friedrich Merz

0: लगातार सातवीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के दिल्ली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता दिल्ली लॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.delhi-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध